नमस्कार अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 1 अक्टूबर 2026, दिन वीरवार, अश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी, 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय होगा 6:16 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:08 पर।

उजाले से भरपूर होकर इस आत्मा इस मन को रोशन करके जीवन सफर को तय करना जरूरी है। इसी से धरती का रूप निखरेगा, यह धरती जन्नत बनेगी। इसी में ही सारी मानव जाति का कल्याण है।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

दोचु बोजन FM 90.0 रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजन रोजियो पनि पसंदीदा बात।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। अब न उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, घर घर की आवाज, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए एपिसोड 2 जरा याद करो कुर्बानी। प्रस्तुत करेंगे नरेश शर्मा, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिटिंग व निर्देशन भारत सोफोरी।

FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। फौजी भाइयों के लिए पेश है हमारा विशेष कार्यक्रम जरा याद करो कुर्बानी।

दोस्तों, इस कार्यक्रम के पिछले भाग में कुछ फौजी भाइयों का अनुरोध था कि हम अपनी बटालियन में, अपनी यूनिट में फौजियों की मर्दाना आवाजें तो सुनते रहते हैं, अब हमें कुछ ऐसा सुनाइए कि हमारी जो महिलाओं की आवाज सुनने की इच्छा है ना, वो पूरी हो सके। तो उनके अनुरोध को सिर माथे पर रखते हुए इस बार हमने कार्यक्रम में सभी गीत महिला गायिकाओं द्वारा ही गाए गए हैं, वो रखे हैं। फौजी भाइयों, जब आप सरहदों पर जाते हो तो सच में सर पर कफन बांध कर जाते हो, और कई बार कुछ फौजी भाई वहीं शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका नाम इतिहास से मिट जाता हो, अरे वो तो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। आने वाली नस्लों तक में उनकी हस्ती की खुशबू सदियों तक महकती रहती है, और फिजाओं में उनकी रूह की आवाज़ गूंजती रहती है और कहती है।

आपके लिए फौजी भाइयों मौसम तो कोई मायने ही नहीं रखता। गर्मी, सर्दी, बरसात, कैसा भी मौसम हो, आप अपने कर्तव्य को लेकर हर पल डटे रहते हैं। आपकी मौजूदगी से जहां दुश्मन के प्राण सूख जाते हैं ना, वहीं आपके अपने किसी खुशगवार मौसम में परवरदिगार से दुआ कर रहे होते हैं कि

लेकिन कोई फायदा नहीं, आपको तो बस अपने वतन की मिट्टी से किया गया वायदा ही याद रहता है, और आप उनको भी याद दिला देते हैं कि तुम्हारे बिना तो चल जाएगा लेकिन वतन के बिना नहीं चलेगा। आप तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि हमें कोई शिकवा नहीं है तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बिना भी, और उनकी जो बात होती है ना वो मन की बात मन ही मन में रह जाती है, और हार कर उनको भी यही कहना पड़ता है कि

भाई आपने तो कहकर दिल हल्का कर लिया, अब उनका क्या करें जिनकी दुनिया ही आप हो, जिन्होंने दिल के दर्पण में सिर्फ और सिर्फ आपको ही देखा है। वो जमाने से शिकायत करते हैं कि हमने दिल ही क्यों लगाया, लेकिन फौजी भाइयों उनके त्याग और समर्पण को भी अनदेखा तो नहीं किया जा सकता ना। ऊपर वाले से बार बार पूछते हैं कि ऊपर वाले हमारे इस सवाल का जवाब तो दे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। खैर, वक्त आने पर छुट्टी की अर्जी भी मंजूर हो जाती है, और जब पता लगता है ना कि अब छुट्टी पर जाना है, तब आपका मन भी बच्चों से फुदकने लगता है। मिलन और जुदाई, इन दोनों के बीच का जो वक्त है ना, वो काटने से भी नहीं कटता। यूनिट से घर तक का सफर ऐसा लगता है हजारों मील का हो गया हो। एक एक पल पहाड़ सा महसूस होता है। दिल कहता है कि काश

छुट्टी पर आने के बाद काम तो बहुत से होते हैं भाई, घर की मरम्मत करवानी है, बाबूजी की आंखों का ऑपरेशन करवाना है, और गुड़िया के लिए रिश्ता भी तलाश करना है। भागदौड़ में तेजी से समय गुजरने लगता है। बड़ी मुश्किल से मौका निकाल कर कुछ पल जो उनके पास बैठते हैं ना, तो उनका कहना होता है कि

लेकिन आप तो अपने दायित्व को भलीभांति जानते हैं, कुछ काम हो जाते हैं और बहुत से काम रह भी जाते हैं। आप अपने दिल को दिलासा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब छुट्टी पर आऊंगा तो बाकी के काम कर लूंगा। आपने तो दिल को समझा लिया, लेकिन वो क्या करें जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं और जिनको पहलू में बैठकर कंधे पर सर रखने तक का मौका नहीं मिला। उनकी जुबान चुप रहती है, पर जानते हैं दिल क्या कह रहा होता है। उनका दिल उनकी जुबान से कह रहा होता है कि

आप उनको भी समझाते हो कि पगली कोई बात नहीं, नौकरी है, इस तरह जिंदगी चलती है, मिलजुल कर ही गुजारा होता है, कोई घर संभाल लेता है तो कोई सरहद, हम दोनों मिलकर ही गृहस्थी का पहिया चलाते रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हमारे जीवन में एक दिया है, एक बाती है, और हमारा वतन हमारा तेल है। अरे इसी को तो जिंदगी कहते हैं, इसीलिए इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। और मैं दोस्तों आपको एक बात बताऊं, एक फकीर ने जिंदगी की क्या खूब मिसाल दी, मुट्ठी भर के रेत की हवा में उछाल दी।

मेरी कोशिश रहती है कि मैं गीतों के साथ साथ आपका मनोरंजन तो करूं ही, साथ ही आपके और उनके दिलों पर दस्तक दे सकूं और वो बातें करूं और सुनाऊं जो सच में आपके साथ बीतती हैं। आपका दिल इन बातों को किसी को बता नहीं पाता। खैर, धीरे धीरे आपका वापस जाने का वक्त भी आने लगता है, अब तो समय भी बैरी हो जाता है। नमुआ किस तेजी से पंख लगाकर उड़ने लगता है, अब तो वो भी हल्की जुबान से कहने लगे हैं कि हमें भी ले चलिए ना, वहीं पर हम क्वार्टर लेकर रह लेंगे, कम से कम सरहद पर ना सही, घर पर रूम पर तो आपका साथ दे ही सकते हैं ना। और वो बार बार कहते हैं

ओहो, मैं बातों की रवानगी में ना वक्त की बंदिशों को ही भूल गया। आपकी भावनाओं ने मुझे भी अपने साथ बहा लिया। मैंने अभी बहुत कुछ कहना था, चलो कोई बात नहीं, फिर सही। अब अपने रेडियो हम सफर मेरे शर्मा को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा इसी प्रोग्राम के अगले भाग में। और हाँ, आपको हमारा ये कार्यक्रम जो विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया है, ये कैसा लगता है? हमें हमारे नंबर 7056413010 एक बार पुनः आपको टेलीफोन नंबर बता रहा हूँ, 7056413010 पर जरूर बताएं। और तब तक के लिए तो नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए, एपिसोड 2, जरा याद करो कुर्बानी। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया नरेश शर्मा ने, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सभी को मेरी नमस्कार। मैं आपकी रेडियो सखी नेहा धाकड़ लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक नई कहानी, जो सिखाएगी कि हमें कभी भी मुश्किल में हार नहीं माननी चाहिए। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहाँ एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। वह रोज सुबह अपने गधे के साथ लोगों के घरों से गंदे कपड़े लाता और उन्हें धोकर वापस दे आता। यही उसका दिन भर का काम था और इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। गधा कई सालों से धोबी के साथ काम करता था और समय के साथ साथ अब वह बूढ़ा हो गया था। बढ़ती उम्र ने उसे कमजोर बना दिया, जिस वजह से वह ज्यादा कपड़ों का वजन नहीं उठा पाता था। एक दोपहर धोबी अपने गधे के साथ कपड़े धोने धोबी घाट जा रहा था। धूप तेज होने के कारण गर्मी बहुत ज्यादा थी। गर्मी ज्यादा होने के कारण दोनों की हालत खराब हो जाती है। गर्मी के साथ साथ कपड़ों के ज्यादा वजन के कारण गधे को चलने में बहुत परेशानी होती है। वो दोनों घाट की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक से गधे का पैर लड़खड़ाने लगता है और वह एक गड्ढे में गिर जाता है। अपने गधे को गड्ढे में गिरा देख धोबी बहुत घबरा जाता है। उसे बाहर निकालने के लिए धोबी बहुत जतन करता है कि किसी तरह ये गधा गड्ढे से बाहर निकल पाए, लेकिन उसकी लाख कोशिशें करने के बावजूद भी गधा गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाता। गड्ढे से बाहर निकलने के लिए गधा भी बहुत जतन करता है, लेकिन बूढ़ा और कमजोर होने के बावजूद गधा गड्ढे से बाहर निकलने में असमर्थ रहता है। गधे ने गड्ढे से बाहर निकलने में अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन वो फिर भी नाकामयाब रहा। धोबी को इतनी मेहनत करते देख कुछ गांव वाले उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गए, लेकिन कोई भी उस गड्ढे से बाहर गधे को नहीं निकाल पाया। तब गांव वालों ने धोबी से कहा कि गधा अब बूढ़ा हो गया है, इसलिए समझदारी इसी में है कि गड्ढे में मिट्टी डालकर उसे यहीं दफना दिया जाए। थोड़ा मना करने के बाद धोबी इस बात के लिए राजी हो जाता है। गांव वाले फावड़े की मदद से गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। जैसे ही गधे को समझ आता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, तो वह बहुत दुखी होता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। गधा कुछ देर तो चिल्लाता है, लेकिन कुछ देर चिल्लाने के बाद वह चुप हो जाता है। अचानक धोबी देखता है कि गधा एक विचित्र हरकत कर रहा है। जैसे ही गांव वाले उस पर मिट्टी डालते, वह अपने शरीर से मिट्टी को नीचे गड्ढे में गिरा देता और उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता। ऐसा लगातार करते रहने से गड्ढे में मिट्टी भरती गई और गधा उस पर चढ़ते हुए ऊपर आ गया। अपने गधे की इस चतुराई को देखकर धोबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने अपने गधे को गले से लगा लिया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कठिनाइयों को पार करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई स्वयं रचित कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो हम उसे अपनी आवाज देकर श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010, 7056413010। सुनते रहो FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: फोटो पे वासी है हम उस देश के वासी।

बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं।

0: हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
1: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। तो लघु कथाओं की श्रृंखला में आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई लघु कथा जिसका शीर्षक है रिश्तों में नफा नुकसान। तो आइए चलते हैं लघु कथा की ओर। विनोद हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे एक 12-13 साल की लड़की तरबूज बेचती हुई मिली। विनोद ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज क्या रेट है बेटा? लड़की बोली, 50 रुपए का एक तरबूज है साहब। पीछे की सीट पर बैठी विनोद की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना जी, चलो यहाँ से। विनोद बोला, महंगा कहाँ है, इसके पास जितने तरबूज हैं कोई भी 5 किलो से कम का नहीं होगा। 50 रुपए का एक तरबूज दे रही है ये, और 10 रुपए किलो पड़ा। अरे बाजार से तो अभी तो तुम 20 रुपए किलो ले ही आती हो। विनोद की पत्नी ने कहा, तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। फिर लड़की से बोली, भाई 30 रुपए का एक देना हो तो दो, वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 रुपए का तरबूज तो मैं खरीद कर लाती हूँ आंटी, आप 45 का एक ले लो, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊंगी। विनोद की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही रेट लगाओ, ये देखो तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक रहे अपने 4 वर्षीय बेटे को तरफ इशारा करते हुए बताया। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथ में उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गई और फिर लड़के के गालों पर हाथ फेर कर बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। विनोद की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाला और बोली, क्या नाम है तुम्हारा भैया? लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है दीदी। बेटे को बाहर निकालने के कारण विनोद की पत्नी कुछ असहज हो गई, तुरंत बोली, अरे बेटा इसे वापस अंदर ही बिठा दो गाड़ी में, इसे डस्ट से एलर्जी है। लड़की उसकी आवाज पर ध्यान न देते हुए लड़के से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है रे भाई, तरबूज खाएगा क्या? लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। अब 5 किलो का तरबूज गोलू संभाल नहीं पाया, तरबूज फिसल कर उसके हाथ से नीचे गिर गया और फूट कर 3-4 टुकड़ों में बट गया। तरबूज के गिर कर फूट जाने से लड़का रोने लग गया। लड़की उसे पुचकारती हुई बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा ले आती हूँ। फिर वो दौड़कर गई और एक और बड़ा सा तरबूज उठा लाई। जब तक वह तरबूज उठा कर लाई, इतनी देर में विनोद की पत्नी ने बच्चे को अंदर गाड़ी में खींच लिया और खिड़की बंद कर दी। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, ले भाई ये बहुत मीठा निकलेगा। विनोद चुपचाप बैठा लड़की की हरकतें देख रहा था। विनोद की पत्नी बोली, जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वो तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के पैसे ही मत देना, ये मैंने अपने भाई के लिए लिया है। इतना सुनते ही विनोद और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। विनोद बोला, नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे लो। फिर 100 का नोट निकालकर उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने हाथ के इशारे से मना करते हुए कहा कि नहीं, पैसे तो मैं नहीं लूंगी। विनोद भी गाड़ी से निकलकर बाहर आ गया और आते ही बोला, पैसे ले लो बेटा वरना तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है जब बात रिश्तों की हो तो नफा नुकसान देखा नहीं जाता, आपने गोलू को मेरा भाई बना दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा भी एक छोटा सा भाई था मगर क्या हुआ तुम्हारे भाई को? विनोद बोला। वो बोली, जब वो 2 साल का था ना, उसे रात में बुखार हुआ था, सुबह माँ हॉस्पिटल में ले जा पाती उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है, उससे 1 साल पहले पापा भी हमें छोड़कर चले गए थे। विनोद की पत्नी बोली, ले बिटिया अपने पैसे ले ले। लड़की बोली, पैसे नहीं लूंगी आंटी। विनोद की पत्नी गाड़ी में गई।
फिर अपने बैग में से एक पायजेब की जोड़ी निकाली जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही 3,000 में खरीदी थी और लड़की को देते हुए बोली, तुमने गोलू को भाई माना ना, तो मैं तुम्हारी माँ जैसी ना हुई, अब तू ये लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने जबरदस्ती लड़की की गोद में पाजेब रख दी। रख ले, जब भी पहनेगी तुझे हम सबकी बहुत याद आएगी। इतना कहकर वो वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर विनोद ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलते हुए चल पड़े। विनोद गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था, भावुकता भी क्या चीज है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 रुपए बचाने के लिए कितने हथकंडे अपना रही थी, अब कुछ ही देर में इतनी बदल गई। जो 3,000 रुपए की पाजेब उस लड़की को दे आई। फिर अचानक विनोद को लड़की की एक बात याद आई कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। विनोद का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फोन मिलाया। फोन उठाते ही बोला, भैया मैं विनोद बोल रहा हूं। भाई बोला, फोन क्यों किया? विनोद बोला, भैया आप वो जो मेन मार्केट वाली दुकान है ना, वो आप ले लें, मंडी वाली दुकान मेरे लिए छोड़ दें, और वो बड़े वाला प्लाट भी आप ले लो, मैं छोटे वाला ही ले लूंगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूं। सामने से काफी देर तक आवाज नहीं आई। फिर उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा रे छोटे। विनोद बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर विनोद को बड़े भाई के रोने की आवाज सुनाई थी। विनोद बोला, रो रहे हो क्या बड़े भैया? बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो मैं सब कुछ तुझे ही ना दे देता, अब घर आ जा, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा कर लेंगे। इतनी कड़वी कड़वाहट और इतने मीठे बोल ना जाने आपस में कहां से मिल गए। कल जो एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे ना, वो आज एक दूसरे को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए। जानते हैं इसके पीछे मॉरल क्या है, शिक्षा क्या है, उद्देश्य क्या है और लेखक कहना क्या चाहता है? त्याग की भावना रखिए। अगर हमेशा देने को तत्पर रहोगे तो लेने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। याद रखें, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। अपनों को करीब रखने के लिए कभी कभी अपना हक भी छोड़ना पड़ता है। और एक बात और कहूं आपसे, ये कहानी अपने किसी जान पहचान वाले परिचित को भेज दीजिएगा। हो सकता है इससे उसके बहुत सारे बिगड़े हुए रिश्ते फिर से बन जाए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: लेकिन हम लोग अनुभव क्यों नहीं करते? कभी आपने सोचा होगा हम इसको डेफर क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो अपनी आंखों से देखते हैं, क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं और फिजिकैलिटी जो हमें फिजिकल आईज से दिखती है हम उसी पे विश्वास करते हैं। हमें फिजिकैलिटी में मंदिर, हमें फिजिकैलिटी में मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये फिजिकैलिटी में दिखते हैं, इसलिए हम उसको वहीं ढूंढते हैं। हम उसको हवन में ढूंढते हैं, हम उसको उपवासों में ढूंढते हैं, हम फिजिकैलिटी में उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ललदेत सचेत करती है हमें कि और तरीका है उसको ढूंढने का, और वो है इनर वर्ल्ड में जाने का। लेकिन वहां हम जा क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारा ईगो जो है एक वेल बन के खड़ा हो जाता है, वो हमें देखने नहीं देता। क्योंकि हमारी वो एबिलिटीज, हमारे वो स्किल सेट्स, हमारी वो कॉम्पिटेंसी डेवलप ही नहीं हुई है कि हम उसको उस दृष्टि से भी देख सकें। इसलिए ललदेत कहती है जिंद ने उछन अधकर मरेत, जिंद मतलब आपको इनर वर्ल्ड की ओर जाना है, अदरवाइज तो हम मरे ही हुए हैं। अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में उसको देख रहे हैं तो हम फिर उसको रियलिटी में देख ही नहीं रहे हैं। तो ललदेत यही कहती है कि उसको अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करना है, परंतु हमारा लोभ, मोह, अटैचमेंट्स, हमारी पावर, हमारी पोजीशन, हमारी जो ईगो है, ये हमें प्रिवेंट करती है उसको इमीडिएटली देखने में। तो वो यही कहती है जिंद नहीं उछन अधकर मरियत पानमज पान कड़वे सैरत के। पानमज पान माने खुद के अंदर से उसको अनुभव करने का आप प्रयास करो, और उस ईगो को ट्रांसेंड करने का प्रयास करो। इसको पोस्टपोन मत करो, इसको अभी आप अपने एक्शन प्लान में लीजिए और स्टार्ट कीजिए उस अनुभव को करना। ये एक दिन का अनुभव नहीं है, परंतु अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपका इनर फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आपको नए आयामों, नए डायमेंशंस की ओर लेके जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब आप उस शिवत्व को अनुभव करने का आनंद उठाओगे और वो आपकी दृष्टि बदल देगा, वो आपका व्यवहार, आपकी पूरी परिकल्पना को एक नई दिशा देगा। नमस्कार।
1: تو چھو بوزان 90.0 ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہوں۔

कच्ची मिट्टी के रिश्ते मुश्किलों की आंच में तप कर पक जाते हैं, जब सदियों तक निभ जाते हैं।

लहर की तरह साहिल से छूकर लौट जाते हो सागर में, और मेरे मन की भीगी रेत पर खेलते यादों के बच्चे उम्मीदों के घरौंदे बनाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन अब इनका रोज रोज बनना टूटना बच्चों का खेल नहीं रहा।

रिश्ते अगर रास्ते हो जाते, खत्म बीच के फासले हो जाते, मैं और एक तू मिलकर एक मैं और एक तू मिलकर हम मोहब्बत के काफिले हो जाते हैं।

अंधेरों में परछाइयों की तरह घुल गए थे, अब जुदाई की धूप में हो गए हैं अलग अलग, अलग अलग परछाइयों की

झील जो बरसों से बस गई है, उसके सीने में जागती है तमाम रात। झील के सीने पर इठलाती बलखाती चलती यादों की लकीरें जो मुझे न सोने

दोस्तों, मिले जुले गीतों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत, जरूर बताइएगा आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। आदाब, नमस्ते।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 6। आज की फिल्म है काला पत्थर। कार्यक्रम पेश करेंगे राहुल अलियान। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज से रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान। लेकर आया हूं कार्यक्रम फिल्मी किस्से का एपिसोड 6 और पहली बार मेरी आवाज में। उम्मीद करता हूं आपको ये अंक अच्छा लगेगा। इस प्रोग्राम में हम बॉलीवुड की कोई मशहूर फिल्म का चयन करते हैं, जिसके फिल्मी किस्से आपको सुनाते हैं और इसी फिल्म के गीत भी। आज हम बात करेंगे फिल्म काला पत्थर की। फिल्म काला पत्थर जो 1979 में बनी थी, जिसे यश चोपड़ा ने निर्देशित किया था, हिंदी सिनेमा की एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। इसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, नीतू सिंह और प्रवीण बाबी जैसे बड़े सितारे थे। फिल्म की कहानी कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी और उनके संघर्षों पर आधारित थी। आइए सुनाता हूँ इसी फिल्म का एक मशहूर गीत, उसके बाद इसी फिल्म के फिल्मी किस्से भी। बने रहिए हमारे साथ।

अमिताभ बच्चन का किरदार विजय एक ऐसा इंसान था जो अपने अतीत के बोझ से जूझ रहा है। यह किरदार वास्तविक जीवन में चासलाना खदान दुर्घटना जो 1975 में हुई थी से प्रेरित बताया गया था। इस घटना में सैकड़ों मजदूरों की मौत हो गई थी। फिल्म की कहानी उस दर्दनाक घटना और मजदूरों के जीवन संघर्षों को दिखाने की कोशिश करती है।

कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के बीच असल जिंदगी में कुछ अनबन थी, लेकिन फिल्म के दौरान उन्होंने पेशावर तरीके से काम किया। यह पहली बार नहीं था जब अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक साथ काम किया, लेकिन इस फिल्म में उनकी बॉन्डिंग को खास सराहा गया। सेट पर भी इनके बीच का दोस्ताना माहौल चर्चित रहा।

काला पत्थर एक आलोचनात्मक सफलता थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। हालांकि समय के साथ इसे एक क्लासिक फिल्म माना गया। फिल्म के लिए यश चोपड़ा ने असली कोयला खदानों का इस्तेमाल किया। शूटिंग धनबाद और आसपास के इलाकों में हुई, जिससे फिल्म को एक प्रमाणिक लुक मिला। कोयला खदानों में शूटिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वहां का माहौल बेहद कठिन था।

गाने उतने लोकप्रिय नहीं हुए, लेकिन इसके डायलॉग जैसे अमिताभ बच्चन का संवाद हमारे नाम से कोई बदनसीब जुड़ा है काफी मशहूर हुआ। फिल्म का संगीत राजेश रोशन ने दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार फिल्म की जान माना जाता है। उनके दमदार डायलॉग और अलग अंदाज दर्शकों को खूब भाया। कहा जाता है कि उनके किरदार को फिल्म में खास तौर पर जोड़ा गया ताकि मसाला एंटरटेनमेंट बढ़े।

काला पत्थर केवल एक ड्रामा फिल्म नहीं थी, यह मजदूरों की दुर्दशा और पूंजीपतियों के शोषण पर एक तीखी टिप्पणी भी थी। फिल्म ने समाज में मजदूर वर्ग की समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की। यह फिल्म आज भी उन दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती है जो समाज के जमीनी मुद्दों को सिनेमा के जरिए समझना पसंद करते हैं।

इसके साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा, मिलता हूँ अगले एपिसोड में किसी और फिल्म के साथ। आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010 पर, या आप मेल भी कर सकते हैं radiovitasta@gmail.com पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से और आज की फिल्म थी काला पत्थर। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राहुल अलियान ने। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 12। आज के आमंत्रित मेहमान हैं लेखक एक्टर अतुल भाटिया जी। इनसे बात करेंगे भारत सोपोरी। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, सहयोग निया जैन का, निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भारत सोपोरी।
0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, लेके आया हूं एक और एपिसोड कार्यक्रम इनसे मिलिए का। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न लोगों से बातचीत करते रहते हैं और अलग अलग सेगमेंट में हम लोगों को आमंत्रण देते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनके दिल की बात, उनके काम के बारे में और उनके मन के बारे में। आज जो हमारे पास स्टूडियो में मेहमान आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे, उससे पहले आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। भारत के नाट्य शास्त्र में रंगशाला के निर्माण के संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया है। जिस ढंग के नाट्य मंदिरों का उल्लेख प्राचीन उल्लेखों में मिलता है, उससे जानकारी मिलती है कि पर्वतों की गुफाओं में खोदकर बनाए जाने वाले मंदिरों के ढंग पर ही नगर की रंगशालाएं बनती थी। आप सभी जानते हैं मैंने बात की रंगशालाओं की, रंगमंच की, तो हमारे साथ आज जो आमंत्रित मेहमान है हम उनका स्वागत करते हैं, जानते हैं उनके जीवन के बारे में और उनके काम के बारे में, क्योंकि मैं मानता हूं कि रंगमंच हमारी जिंदगी का एक ऐसा प्रतिबिंब है जो हमारी पर्सनैलिटी को, जो हमारे व्यक्तित्व को लोगों के सामने एक और रूप में लेके आता है। आज हमारे पास स्टूडियो में आमंत्रित है जीरकपुर से श्री अतुल भाटिया जी। भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के कार्यक्रम इनसे मिलिए में FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर।
3: नमस्कार जी भरत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके संदर्भ से आज मुझे मौका मिल रहा है आपके चैनल पर आने का, रेडियो चैनल पर, जबकि मैं बहुत समय से ये सोचता था कि मैं आपसे मिलूं, देर आए दुरुस्त आए, आज आपसे मुलाकात हुई। दोबारा से कहूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अतुल जी, शुरुआत वहीं से करते हैं जहां सबसे ज्यादा तालियां बजती है, यानी मंच और कैमरे से। आपका अभिनय का सफर कैसे शुरू हुआ?
3: अभिनय के बारे में मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि आज के समय में अगर हम देखें तो हम सभी लोग अभिनय करते हैं, घर में भी, ऑफिस में भी, अपने बिजनेस में, सब जगह पर। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको मंच पे करना पड़ता है जहाँ पे लोग देख रहे हैं, जबकि रोजाना के दिनचर्या में हम जो अभिनय कर रहे हैं वो देखने वाला कोई नहीं है, वो सिर्फ हम जानते हैं। जैसे कि मैं उसका एक उदाहरण दूंगा, आप अपने ऑफिस में लेट पहुंचे
0: जी,
3: आपको मालूम है कि आपका बॉस आपसे नाराज होगा
0: और पूछेंगे जरूर कि क्यों देरी हुई।
3: हाँ, और वो ये भी पूछेगा, मगर उस वक्त आप क्या अभिनय करेंगे ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आप क्या कहेंगे, सर आपको नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ, इस तरह का अभिनय करेंगे, मगर वो आपके अभिनय के ऊपर, वो कहेगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कल आप जल्दी आ जाना। तो कहने का मतलब है कि हम रोज की दिनचर्या में अभिनय करते हैं, मगर सिर्फ फर्क यही है कि भी यहाँ पे आपको रंगमंच पे आके, एक मंच पे आके आपको अपना किरदार निभाना है।
0: भाटिया जी, अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपसे ये पुष्टि चाहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं कि ये एक अभिनेता है जो अभिनय करता है, तो क्या मैं मानूं कि हम सब अभिनेता है?
3: जी हाँ, बिल्कुल 100%। देखिए, बच्चे, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, हम सब जितने भी रिश्ते में हैं और उसके अलावा ऑफिस में सब जगह पे हम सभी लोग अभिनय करते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने बच्चे का कुछ सामान नहीं लेकर आए, आप घर जाके बच्चे को वही चीजें बताएंगे कि बेटा तुम्हें नहीं पता आज मेरे साथ ऑफिस में क्या हुआ, मैं तो आज बहुत काम था, मैं थक गया, मैं ये हो गया, मैं मेरे साथ वो हुआ और कल कोशिश करूंगा पक्का लेके आऊंगा। उसी तरह से उसी चीज को देखते हुए कल को आपका बच्चा भी स्कूल में जाके वही अभिनय करेगा कि मैम कल तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैंने किया नहीं। मैम कहेगी हाँ कोई बात नहीं चलो कल करके लाना।
0: यानी कि हम मान के चलें कि अभिनय हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग है।
3: जी हाँ।
0: पर भाटिया जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जब वास्तव में हम एक मंच पर अभिनय करने जाते हैं, एक स्क्रिप्ट होता है, एक सोच होती है, एक जो निर्देशक होता है उसके निर्देशन में हमने वो लाइन्स या वो डायलॉग्स बोलने होते हैं, सबसे पहली बार आपने मंच पर अभिनय कब और कहां किया?
3: हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। सबसे पहले मैंने जो अभिनय का सफर शुरू किया वो मैंने किया था अपने कॉलेज टाइम में।
0: जी।
3: तब मैंने सिर्फ एक मोनोस्क्रिप्ट पे काम किया था जिसमें मैंने शराबी की एक्टिंग की थी।
0: जी।
3: तो उससे मेरा समय शुरू हुआ एक्टिंग का, मगर उसके बाद काफी समय तक मैंने अपना एक्टिंग का कोई काम नहीं किया। कारण कि मैं जब मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया तो उसके बाद मैं मुंबई जाना चाहता था, मगर मेरे माताजी मदर ने मेरे मुझे जाने से रोका। वो कहते नहीं, कहते वहाँ पे क्या करेगा, तो इस तरह से उन्होंने मुझे उस वक्त रोक दिया। और फिर मैं अपने नौकरी में पड़ गया और नौकरी मैंने करता रहा। फिर जब मेरी बेटी की शादी हुई उस वक्त 2017-18 में, तब उसके बाद मैंने ये सोचा कि मेरे को अभिनय करना चाहिए। और तब मैंने अपना पहला सोलो एक्ट एक प्ले किया थिएटर में, टैगोर थिएटर में, सेक्टर 18 चंडीगढ़ में
0: जी।
3: जो था 1.5 इंच ऊपर
0: जी,
3: जिसमें कि एक ऐसे इंसान का किरदार था जो कि अपनी पत्नी के साथ रहता है मगर उसको ये नहीं मालूम कि उसकी पत्नी कैसे उसकी दुनिया से अलग दुनिया में रह रही है, जहाँ पे कि वो देश विरोधी चीजों में संलिप्त है
0: जी।
3: और उसके घर से ऐसी चीजें मिलती हैं जिसमें कि बाद में उसको पता चलता है कि मेरी बीवी मेरी पत्नी तो
0: इन कामों में
3: संलिप्त थी और मुझे मालूम ही नहीं था
0: जी।
3: तब वो अपनी व्यथा बताता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, जबकि ये एक तरह से जर्मनी बेस्ड कहानी थी
0: जी।
3: मगर वो मेरा पहला किरदार था जिसमें कि मैंने जब थिएटर पे कदम रखा तो उसके बाद मेरे को इतना रिस्पांस मिला, मेरे से सीनियर लोगों का रिस्पांस मिला जो मेरे से काफी सालों से थिएटर से जुड़े हुए, मंच से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया, कहते सर हम इतने सालों में हम सोच रहे थे कि हम सोलो एक्ट करें मगर कहते हमें मौका नहीं मिला, मगर कहते आपने पहली बार मंच पे काम किया और सोलो एक्ट किया, ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है ना।
0: आपके इस किरदार के बारे में बात करना चाहूंगा मैं, उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि कोई भी किरदार जब हमने मंच पर मंचित करना होता है तो आप उस किरदार को कैसे समझते हैं, उस किरदार की जो बारीकियां हैं वो आप अपने कैसे मन में रखते हैं, या जो उसके डायलॉग्स होते हैं, स्क्रिप्ट होते हैं, उसको आप कैसे अपने मन में बिठा लेते हैं? मैंने ये प्रश्न इसलिए किया क्योंकि जो ये कार्यक्रम सुनने वाले हमारे नए कलाकार हैं उनको भी आपके इस अनुभव से एक मार्गदर्शन मिले।
3: जी हाँ बिल्कुल। देखिए मैं इसी जो मैंने ये नाटक किया मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। जब ये स्टेज प्ले किया मैंने
0: जी
3: तो 40-45 मिनट का प्ले था
0: जी।
3: अब जब मैंने एक महीना तक उसकी मैंने खूब रिहर्सल की, मैंने उसको याद भी किया, सब कुछ किया, मगर आप यकीन मानिए कि शुरू करने के 5 मिनट बाद मैं एकदम ब्लैंक हो गया। जो मेरे निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके भी एक बार होश उड़ गए कि गया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें मेरे साथ कोई और किरदार नहीं था
0: जी।
3: जो कि मेरे को
0: सपोर्ट
3: कर सके,
0: याद दिलाता
3: जी। मैंने उसी समय जहां पे मैं चेयर पे बैठ के मैं बात कर रहा था, मैं उठा, मैं एक चक्कर काटा उसी स्टेज पर और अपने आप को संभाला और उसके बाद मैंने फिर शुरू किया और उसके बाद करते करते मैंने उस प्ले को समापन किया और लोगों ने इतना रिस्पांस अच्छा दिया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं बीच में भूला था। जबकि बाद में मुझे गौरव शर्मा जी थे तो उन्होंने मेरे को ये कहा, कहते आपने बहुत बढ़िया किया, कहते कारण कि जो एक्टर या आर्टिस्ट उस वक्त परफॉर्म कर रहा है और जो निर्देशक उसको देख रहा है, सिर्फ वही दो लोग जानते हैं कि आपने क्या मिस किया
0: जी।
3: आपके सामने जो ऑडियंस है उनको नहीं मालूम कि आपने क्या मिस किया।
0: तो ये एक बहुत बड़ी काबिलियत है एक कलाकार के लिए, खास करके जब हम थिएटर परफॉर्म कर रहे हैं, मंच पर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर रिटेक का कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब ये आपने सोलो परफॉर्मेंस जो कंप्लीट की, जो आपने पूरा किया, आपको लोगों की तालियां भी मिली, सब कुछ मिली, तो कहीं ना कहीं उसका गिला पीछे दिल में कहीं रहा कि मैं ब्लैंक क्यों हुआ?
3: देखिए हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कलाकार को ही मालूम होता है कि वो कहाँ पे उसने मिस किया है
0: जी।
3: मगर उसके बाद से आज तक जितने भी मैंने थिएटर भी किया, मैंने शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया, मैंने वेब सीरीज में भी किया, मैंने सीरियल्स में भी काम किया है, मूवीज में भी काम किया, तो मैंने उस थिएटर के पहले एक्ट से मैंने ये सोच के मैं चला कि अगली बार से मैं उसको और ज्यादा अच्छी तरह से याद करके अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकूं, जिससे कि कमी कोई ना रहे, पहली चीज। और दूसरी चीज कि निर्देशक को भी आपके ऊपर कहने का मौका ना मिले
0: जी।
3: देखिए आज भी मैं ये कहूंगा कि मैं अपने अभिनय में परिपूर्ण नहीं हूं, मैं आज भी अपने से छोटों से भी, अपने से बड़ों से भी, मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखता हूं
0: जी।
3: और मैंने सीखा भी है और मेरे में सीखने की भावना भी है
0: जी।
3: कि मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करूं। इसीलिए आज तक अगर मैं कहूं तो मैंने 2017 से लेके आज 2025 8 सालों में मैंने भिन्न भिन्न तरह के किरदार को निभाया है, जिसमें कि मैंने प्रिंसिपल, डॉक्टर, जज, फिर हस्बैंड, फिर फादर, फिर भाई, इस तरह से काफी किरदार निभाए। जबकि सबसे जो मेरे को चैलेंजिंग किरदार लगा वो लगा जब मैंने पहली बार नेगेटिव करेक्टर किया
0: जी।
3: जिसमें कि मैं ये कहूंगा कि मेरे निर्देशक ने मुझे सिर्फ एक करेक्टर बताया कि आपका ये करेक्टर है, तो मैंने उसमें मैंने अपने आप उसको इम्प्रोवाइज किया। मैंने कहा देखिए अगर मैं इसको सिंपली परफॉर्म करूंगा तो शायद हो सकता है कि उस चीज का इम्पैक्ट उतना ना पड़े
0: जी,
3: उतना असर ना पड़े। मगर मैंने उसमें सिर्फ इतना ऐड किया कि मैंने कहा कि मैं, क्योंकि मेरी जो वेशभूषा थी वो सिर्फ कुर्ता और पजामा थी और एक परना था
0: ठीक है
3: गले में, तो मैंने अपने एक टांग का पजामा ऊंचा करके लंग मारते हुए मैंने उसको परफॉर्म किया, जो कि बाद में सभी ने उसको ये कहा कि अगर ये सिंपल होता
0: तो शायद
3: उतना इफेक्ट ना पड़ता। और बाद में जब हमारा वो शो, जो हमारी शॉर्ट फिल्म थी स्नेहा, जो कि चौपाल पे रिलीज भी हुई ठीक है, और सब ने देखा तो उन्होंने कहा कि जो मेन विलन था वो तो नो डाउट उसका रोल
0: बड़ा था।
3: मगर कहते कि आपका भी उतना ही इफेक्टिव था, सिर्फ किस वजह से कि एक लंग मारने की वजह से।
0: भाटिया जी आगे चलने से पहले आपसे मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बात की एक शॉर्ट फिल्म की या एक फिल्म की जो चौपाल पे रिलीज हुई, जो हमारे जो श्रोता है वो अब भी वहां पर देख सकते हैं, आप मुझे ये बताइए रंगमंच जब हम एक मंच पे करते हैं, जब लाइव होता है उसमें और जब आप कैमरा के सामने अपना किरदार निभाते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है? और जितने भी श्रोता हमें अभी इस समय सुन रहे हैं, बहुत ही बढ़िया जानकारी अतुल भाटिया जी आपको दे रहे हैं। और जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं हमें उसके बारे में सोचना समझना जरूरी है, ताकि हम अच्छी तरह से अपने आप को अभिनय के लिए तैयार करें, चाहे वह हमने मंच पर किरदार निभाना हो या कैमरा के सामने। तो इन दोनों में क्या अंतर है कृपया वो बताएं।
3: देखिए, रंगमंच में और जो आप टीवी पे या किसी चैनल पे काम करते हैं, उसमें सिर्फ जो फर्क मैं समझता हूँ वो ये है कि रंगमंच पे आपके सामने ऑडियंस बैठी है
0: जी,
3: जिसमें कि आपको अपना फुल वॉल्यूम खुद देना पड़ता है
0: जी,
3: और आपको मालूम है कि लोग आपको उसी वक्त इमीडिएटली आपके किरदार के हिसाब से आपको वाहवाही देंगे या ये कहेंगे कि ये
0: अच्छा
3: कुछ भी नहीं है
0: जी।
3: जबकि उसके उलट अगर हम देखें, जब आप किसी चैनल पे आते हैं या टीवी में आते हैं, तो उसमें आपके पास रीटेक की, डबिंग की, बाकी चीजों की इम्प्रूव करने की गुंजाइश होती है
0: जी।
3: जबकि मैंने ये देखा है कि बहुत जगह पर जब हम किसी निर्देशक के साथ काम करते हैं तो वो ये खुद कहते हैं कि सर अगर आपने इसमें कुछ भी इम्प्रोवाइज करना है इस डायलॉग में आप कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट मैं समझता हूँ वही सबसे बढ़िया है जो किसी भी किरदार को खुद इम्प्रोवाइज कर सके। वो तब करेगा जब वो उस करेक्टर में खुद उतरेगा।
0: यानी कि एक अभिनेता में इतनी क्षमता होनी चाहिए, जब भी कोई वो स्क्रिप्ट पढ़ लेता है उस किरदार को उसको समझना पड़ेगा और उसको अपने तरीके से उस किरदार में जितनी भी जान डालने की जरूरत है उसको वो जान डालनी होगी।
3: बिल्कुल जी।
0: भाटिया जी, आपसे हम बात करते रहेंगे और आपसे एक अलग सी एक बात पूछना चाहूंगा। संगीत का कितना रोल आपकी जिंदगी में है और आपके इस अभिनय में है?
3: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, संगीत का हमारी सभी लोगों की जिंदगी में एक अहम रोल है। हम स्कूल टाइम में, अगर मैं स्कूल टाइम से बात करूं तो स्कूल टाइम में मुझे आज भी याद है कि उस वक्त हमारे टाइम में जितने भी सिंगर्स थे उनकी गानों की किताबें बनती थी
0: जी,
3: और मेरी बचपन में आदत थी कि मैं वो बुक्स लेकर आता था। उस वक्त शायद 1 रुपए या 2 रुपए की मिलती थी, 5 रुपए की मिलती थी, तो वो मैं लेकर आता था और मैं उन लिरिक्स को खुद बोलता था।
0: अच्छा।
3: और साथ में गाने की कोशिश करता था
0: जी।
3: ठीक है, मुकेश के गाने मुझे आज भी उतने ही
0: अच्छी
3: तरह से याद हैं और गाता भी हूँ
0: जी।
3: और सभी जितने भी पुराने सिंगर्स हैं उन सभी के गाने हमने खुद वो पढ़े हुए हैं। आज भी अगर किसी चैनल पर वो पुराना गाना आता है तो उसके लिरिक्स जो है ना वो हमें याद है
0: जी।
3: वो हम उसके साथ साथ बोल सकते हैं
0: जी।
3: इसलिए मैं ये कहूंगा कि गाने तो इंसान की एक तरह से लाइफ लाइन।
0: तो मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे श्रोता इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके लिए भी आप का कोई मनपसंद गीत हो जो हम आपको और श्रोताओं को सुनाएंगे, और अगर आप हमारे श्रोताओं के लिए वो गुनगुनाएं भी तो सोने पे सुहागा होगा।
3: मेरे काफी फेवरेट सॉन्ग्स हैं
0: जी जी।
3: उसमें जो है एक सॉन्ग संजीव कुमार के ऊपर फिल्म आया गया है अनोखी रात का, वो था ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में।
0: क्या आप इसको थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए गुनगुनाएंगे?
3: हाँ जी, हाँ कोशिश करता हूँ। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में,

0: भाटिया जी, बहुत ही उम्दा गीत था ये जो आपकी पसंद थी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी ये गीत पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए, और हमारे साथ आज हैं अतुल भाटिया जी, जो एक मंच कलाकार है जिन्होंने टीवी सीरियल्स में काम किया है, शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है, फिल्म्स में काम किया है, और साथ में एक और गुण भी है इनमें, और वो है लेखन का। ये लेखक भी है। आइए बातचीत करते हैं अतुल भाटिया जी से। भाटिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी जानकारी जो आप दे रहे हैं हमारी कोशिश FM 90.0 MHz रेडियो इतस्ता पर लोगों तक वो बात पहुंचानी है जिससे हम लोगों का मार्गदर्शन भी कर सके, खास करके उन कलाकारों की जो नवोदित कलाकार है जिनके मन में बहुत सारे सपने हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, एक कलाकार जब मंच के साथ जुड़ता है या वो कैमरा के सामने छोटा मोटा किरदार निभाता है, उसके मन में होता है कि अब मैंने मुंबई जाना है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप उन नवोदित कलाकारों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो मुंबई जाएं, उनको कितनी तैयारी पहले अपने स्तर पर करनी चाहिए, क्योंकि जब मुंबई जाते हैं तो वहां बहुत सारा कंपटीशन होता है, ताकि उनके मन में कोई ऐसी बात ना रहे, वो परिपूर्ण ना हो और वो मुंबई जाएं और उनको वहां पर कामयाबी ना मिले तो उनके मन पर कोई परेशानी ना हो, तो आप उन नवोदित कलाकारों को अपनी ओर से क्या कहना चाहते हैं?
1: हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कोई भी कलाकार जब इस अभिनय मंच से जुड़ता है तो उसका पहला सपना होता है कि मैं मुंबई जाऊं।
0: जी,
1: मुंबई जाना या मुंबई जाने का सपना देखना बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ, मगर जो सबसे बड़ी दुविधा है वो यही है कि आज के समय में हर इंसान किसी ना किसी अभिनेता से या किसी निर्देशक से या किसी संगीतकार या संगीत से जुड़े किसी भी व्यक्ति से हमेशा इंस्पायर होता है, और उसका वो रोल मॉडल बन जाता है, और वो उसी को सोच के वो आगे चलता रहता है कि एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा या मैंने भी ऐसा बनना है।
0: जी।
1: अब जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो यही आती है कि हमने रोल मॉडल तो पसंद कर लिया कि हमारा ये रोल मॉडल है।
0: जी।
1: मान लीजिए संजीव कुमार, प्राण साहब,
0: जितेंद्र,
1: धर्मेंद्र या कोई भी।
0: जी।
1: कि हम आज उसकी कामयाबी को देख रहे हैं।
0: जी।
1: कि वो कितना कामयाब है, आज उसके पास क्या क्या है, उनकी स्ट्रगल पे, उनकी मेहनत पे या उनके रिजेक्शन पे, उनको कितनी बार ना मिली, हम उसके ऊपर कभी नहीं सोचते। कारण पहुंचना आसान है वहां पे, मगर वहां पे पहुंच के टिक पाना और फिर कामयाब होना वो आसान नहीं है।
0: जी।
1: मैं खुद मुंबई में रहा हूँ कोविड से पहले। हम एक दिन में 15-20-30 प्रोडक्शन हाउस में, स्टूडियोज में हम खुद जाते थे,
0: अपना ऑडिशन
1: देने, लोगों से इंट्रोड्यूस होने, और उन 20 जगह में हमें मालूम होता था कि शायद उसमें से सिर्फ एक नहीं हमें एंटरटेन करना है।
0: जी।
1: बाकी कोई नहीं करेगा, और होता भी यही था।
0: जी।
1: आज भी मेरे पास उस टाइम के लिखे हुए कितने ही प्रोडक्शन हाउस के एड्रेसेस, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट पर्सन सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि उनमें से काम मिलता नहीं है, लोगों को मिलता है, मगर ये नहीं है कि वो आपके मन मुताबिक काम देंगे, वो अपने मुताबिक काम देंगे।
0: मेरा आपसे जानने की इच्छा ये थी कि जब आप मुंबई जाते हैं तो हमें कितनी पहले अपनी जगह पर तैयारी करनी चाहिए, हमारा कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए एज फार एज मंच या कैमरा के सामने काम करने का अनुभव हो।
1: देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि किसी भी काम को करने से पहले आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी।
0: जी।
1: आप तब तक उस काम को नहीं कर सकते जब तक आपको उसके बारे में बेसिक चीजें नहीं मालूम हो।
0: जी।
1: और मैं ये समझता हूँ कि आज के समय में थिएटर जो है, रंगमंच जो है, वो एक सबसे अच्छी व्यवस्था है
0: जहां से हम बेसिक
1: सीख सकते हैं।
0: जी।
1: तो आप सोचिए कि अगर आपने तैयारी ही नहीं की कुछ भी,
0: तो मुंबई जाने
1: आप का मुंबई जाके क्या करेंगे? और फिर रंगमंच ऐसा है जो कि आपके अंदर के कलाकार को और निखारता है।
0: जी।
1: और बाहर निकालता है।
0: जी।
1: और आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा सीख सकते हैं।
0: इसके साथ ही जुड़ा एक छोटा सा प्रश्न मैं करना चाहूंगा, क्या मुंबई जाने के लिए वहां पर कामयाब होने एक अभिनेता के तौर पर क्या कोई शॉर्टकट है?
1: देखिए, जिंदगी में शॉर्टकट तो किसी चीज का नहीं
0: जी,
1: और मैं ये कहूंगा कि आज के समय में यहाँ तक कि चंडीगढ़ जैसी जगह में भी
0: जी
1: बहुत से प्रोडक्शन हाउस, स्टूडियोज, शूटिंग यहाँ पे भी हो रही है
0: जी। सभी श्रोताओं को मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छी और नेक सलाह है उन कलाकारों के लिए जो अभिनय के कला में अपनी किस्मत है वो आजमाना चाहते हैं या अभिनय करना चाहते हैं, जो उनके मन के साथ जुड़ा काम है वो करना चाहते हैं। एक नेक सलाह अतुल वाठिया जी ने आप सभी श्रोताओं को दी और मुझे उम्मीद है कि यही हमारा मकसद भी है कि हम आप सभी को मार्गदर्शन भी कर सकेंगे। आइए अब हम एक और कला के बारे में बात करेंगे जो अतुल भाटिया जी के पास है, वो है लेखन का। भाटिया जी, आप लिखते भी हैं, तो लिखते टाइम आपके मन में क्या सोच होती है या किस विषय पर आप खास तौर पर लिखते हैं?
1: देखिए, लेखन की बात जहां तक मैं ये कहूंगा कि लेखन के जो विचार हैं वो आपके आसपास के माहौल में और आपके आसपास के समाज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे कि आप मोटिवेट हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। क्योंकि मैंने भी ये देखा है और हम सभी लोग ये देखते हैं कि हमारे आसपास इतनी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में हो रही हैं और उनसे हम मोटिवेशन लेकर हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। हर इंसान के घर में कुछ ना कुछ समस्याएं चल रही हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, और जब हम उन चीजों को हम लिखते हैं या उन चीजों का नाट्य मंचन करते हैं
0: जी,
1: तो हमारा समाज उस चीज को देख के सोचता है, जागरूक होता है
0: जी।
1: और दूसरा, हर इंसान उससे रिलेट कर पाता है कि शायद यार ये मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ ना कुछ हो रहा है
0: जी,
1: या मेरे आसपास ऐसा हो रहा है
0: जी। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हर कोई व्यक्ति लेखक हो सकता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लेखक जो है वो चिंतक होता है, जब कोई भी चीज उसको समाज में अच्छी या बुरी दिखती है उसके बारे में वो फिर अपने शब्दों में उसको डाल लेता है। क्या हर कोई व्यक्ति लेखक हो सकता है?
1: देखिए, हाँ, आपकी बात ठीक है, हर इंसान लेखक हो सकता है। अगर उसने किसी भी विषय के ऊपर लिखना है तो उसके लिए उसको गहन सोचना अवश्य पड़ेगा। फिर दूसरी बात यह है कि उसको कुछ ना कुछ समाज से जुड़े हुए विषयों के बारे में ज्ञानता भी होनी चाहिए, और रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या मुश्किलें, चैलेंजेस आ रहे हैं,
0: उसका ज्ञान,
1: ध्यान और ज्ञान दोनों चीजें होनी चाहिए।
0: आपके लेखन में यादें क्या मायने रखती है?
1: देखिए, यादों की बात ऐसे है कि जो बीत गया हमेशा वही याद आता है
0: जी,
1: वो चाहे अच्छा है या बुरा है
0: जी।
1: जो आने वाला है उसके बारे में तो कोई जानता नहीं है
0: जी,
1: जबकि जीना पड़ता है हमें वर्तमान में
0: जी।
1: और यादें हमेशा जो आपके साथ अच्छी चीजें जिंदगी में हुई हैं, मैं समझता हूँ कि उन्हीं से ही, उन्हीं को ही हम याद करके शायद जिंदगी में
0: आगे की ओर बढ़ते हैं
1: या कि वो समय ज्यादा अच्छा था।
0: ऐसा कहा जाता है कि जो बीत गई सो बीत गई, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: आपकी बात बिल्कुल ठीक है भरत जी, कि जो बीत गया वो समय वापस नहीं आएगा
0: जी।
1: मगर मैं ये भी कहूंगा कि बीते समय से जो बीत गया उससे हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए
0: जी। बहुत बड़ी बात कही आपने,
1: क्योंकि जब तक आप उन चीजों से, उस समय से आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे,
0: आगे का निर्माण अच्छे तरीके से हाँ नहीं कर पाएंगे।
1: यस, बिल्कुल जी।
0: आपको मैं बचपन की ओर लेके चलता हूँ, आप बचपन की कोई ऐसी याद हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को बताइए, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आज के दिन में जब आप उस बचपन की याद को याद करते हैं, मन में दोबारा ले आते हैं, तो आपके मन में उल्लास, खुशी आती है।
1: बचपन के बारे में मैं ये कहूंगा कि मैंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने पिताजी को खो दिया था, तो मैं ये कहूंगा कि जितना भी समय
0: जी
1: मैंने उनके साथ बिताया वो मुझे आज भी याद है
0: जी।
1: और ये कहूँगा कि मेरे पिताजी को भी एक्टिंग का बहुत शौक था
0: जी।
1: वो भी चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर से जुड़े हुए थे
0: जी।
1: उन्होंने स्वर्गीय श्री बलवंत राय गार्गी जी के साथ काम किया। तो शायद वही उनकी मोटिवेशन थी जिसकी वजह से मैं अभिनय के
0: इस फील्ड में आया
1: या इस अभिनय से मैं जुड़ा।
0: तो क्या मैं कहूँ कि आपका जो अभिनय है ये आपको विरासत में मिला है?
1: जी हाँ बिल्कुल, मैं इसके लिए 100% श्रेय जो है वो मैं अपने पिताजी को दूंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माता पिता हमारा वजूद है, उनके प्रति जो हमारी सोच है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि उनके होते हुए ही हमारा निर्माण होता है। कभी आप यादों के बारे में कोई ऐसा गाना आप हमें बता सकते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगता है और हम श्रोताओं का भी मनोरंजन करें?
1: हाँ बिल्कुल जी, देखिए इस पे मैं कहूँगा कि मेरे फादर का ही यादों से जुड़ा हुआ एक गाना है
0: जी।
1: फिल्म थी दिल एक मंदिर
0: जी,
1: राजेंद्र कुमार का गाना था
0: जी।
1: याद ना जाए बीते दिनों की।
0: तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए अगर इसको हल्का सा गुनगुनाएं और उसके बाद हम आपको ये गीत भी सुनेंगे।
1: याद न जाए बीते दिनों की, जाके ना आए जो दिन दिल

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए, और हमारे साथ आज स्टूडियो में आमंत्रित मेहमान है एक्टर लेखक श्री अतुल भाटिया जी, जो जीरकपुर से खास तौर पर आपके साथ बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इनसे हमने बहुत सारी बात की, और अब हम इनसे इस आखिरी हिस्से में कुछ खास बात करना चाहते हैं जो आपके साथ, हमारे साथ, हम सबकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। भाटिया जी, इस आखिरी दौर में, इस कार्यक्रम के आखिरी दौर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दोस्त और दोस्ती आपके लिए क्या मायने रखती है, और मैं चाहूंगा कि आप विस्तार में बताएं।
1: हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि दोस्त और दोस्ती। मैं ये कहूंगा कि जिंदगी में दोस्त होना बहुत जरूरी है, पहली चीज। उससे भी ज्यादा जरूरी है दोस्ती
0: जी।
1: अब आप कहोगे कि दोस्त और दोस्ती में क्या फर्क है
0: जी।
1: दोस्त आज के समय में आपके शायद बहुत से हो सकते हैं, जिनसे आप रोजाना मिलते हैं या नहीं मिलते। किसी से हो सकता है आप 6 महीने में एक बार मिले, साल में एक बार मिले, कोई बात नहीं, वो दोस्त है आपका
0: जी।
1: मगर दोस्ती वो चीज है जहां पे कि आपके बोले बिना सामने वाला समझ आए, और ये होना बहुत संभाविक भी है और आसानी से मिलता भी नहीं है
0: जी।
1: क्योंकि कहने को तो बहुत आ जाएंगे, मैं भी तेरा दोस्त हूँ, या मैं किसी को कह दूंगा मैं दोस्त हूँ, मगर अगर कल को आपके ऊपर या उसके ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, उस वक्त आप कितना उसके साथ बिना सोचे समझे साथ दे रहे हो, ये दोस्ती है। मेरी दोस्ती अगर मैं कहूँ तो आज भी स्कूल के समय से लेके आज तक अपने दोस्तों के साथ दोस्ती बनी हुई है
0: जी।
1: जिनमें कि बहुत से ऐसे हैं कि मैं जानता हूं कि अगर मैं इस एक व्यक्ति को रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी कहूंगा ना, तो ये मेरे पास आके खड़ा है, मेरे
0: हाजिर,
1: साथ हाजिर है। और उसी तरह से मैं भी हूं
0: जी।
1: कि अगर मुझे पता चल गया कि यार वो इस वक्त किसी मुसीबत में है, तो मैं उसके पास जाके खड़ा हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस इंसान को या वो इंसान आपको कि पैसे से वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। पैसा एक साइड में है
0: जी।
1: पैसे से भी जरूरी जो है वो है दोस्ती। अगर वो उस मुसीबत की घड़ी में आपके साथ आके सिर्फ खड़ा भी हो गया ना, तो ये भी सबसे बड़ी चीज है।
0: वही सच्चा दोस्त है। इसके साथ जुड़ता हुआ मैं एक और प्रश्न करना चाहूंगा आपके लिए। आज का जमाना सोशल मीडिया का दौर है, जहां पर हम कई सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जो हमें जानते भी नहीं है, और पहले जमाने में हमारे परिवार के जन या हमारे ऐसे दोस्त होते थे जिनके साथ हम समय बिताते थे। तो उस दोस्ती और आज सोशल मीडिया के दोस्तों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि उस वक्त जिस दौर में हमारे पास फोन भी नहीं होता था, मोबाइल भी नहीं होता था, या सोशल मीडिया नहीं होता था, उस समय दोस्ती का मायने और था। आज के समय में दोस्ती में भी बहुत जगह पर फॉर्मेलिटीज आ गई
0: जी।
1: मैं स्कूल टाइम में उस वक्त बिना किसी के फोन किए हम किसी के घर जा सकते थे। आज के समय में आपको फोन करके ही आना पड़ता है कि यार मैं हूं या नहीं हूं, तूने पूछा क्यों नहीं
0: जी।
1: तो ये एक फॉर्मेलिटी जो है ना, वो सोशल मीडिया ने या मोबाइल ने हमें बांध दिया या रोक दिया। जबकि पुराने पहले समय में, आज से 30 साल 40 साल पहले, ये चीजें थी नहीं।
0: चिट्ठियां लिखने का समय होता था, और 6 महीने के बाद मिलने का समय होता था। इंसान एक दूसरे के साथ जाके समय बिताते थे, तो जो रिश्ता था वो बहुत गहरा होता था,
1: बहुत गहरा।
0: आज के दौर में जो हमारे रिश्ते हैं वो भी सोशल मीडिया ने तार तार कर दिए, दूर कर दिए। मैं भाटिया जी आपसे अंत में ये कहना चाहूंगा कि आप कुछ खास बात कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को।
1: देखिए, मैं सिर्फ यही एक जाते समय एक मैसेज देना चाहूंगा कि दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, इन सभी की अहमियत को हमें समझना चाहिए। बिना इन सब चीजों के शायद हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है
0: जी।
1: अभी कुछ समय पहले ही मैंने अपना एक बहुत अच्छा मित्र खो दिया, ठीक है। और इस कार्यक्रम का जो अंत है, मैं सिर्फ उसकी याद में एक गाने को समर्पित करूंगा
0: जी,
1: जो कि मुझे आज भी उसके साथ बिताए हुए समय, बिताए हुए पल याद आते हैं।
0: मैं चाहूंगा कि आप उनका नाम भी बताएं।
1: मेरे उस मित्र का नाम था अश्विनी
0: जी,
1: जो कि ट्रिब्यून में काम करते थे
0: जी।
1: ठीक है, अभी दो ढाई साल पहले ही हमने उसे खो दिया
0: जी।
1: तो इवन यहाँ तक कि ये जो मैं गाना उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ, मैंने उनके साथ भी बहुत सी पार्टीज में, गेट टुगेदर में गाया है
0: जी।
1: जो था, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं
0: जी,
1: मगर बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं।
0: अतुल भाटिया जी, आपने अपने दोस्ती को याद किया, अपने दोस्त को याद किया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे जीवन में अगर है, वो लोग हैं जो हमारे जीवन में हमारे साथ चले हैं, हमारी खुशियों में साथ रहे हैं, हमारे तकलीफों में साथ रहे हैं। वैसे भी कहा जाता है कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए, जिससे आप दिल की बात करते हैं, क्योंकि दोस्ती जब हम करते हैं तो वो रंग या एक व्यक्ति को देख के नहीं करते हैं, वो दिल ही हमें गवाही देता है कि ये हमारा दोस्त हो सकता है, और अगर उस दोस्त को हम खोएं तो दिल में कहीं ना कहीं दर्द जरूर होता है। तो सभी श्रोताओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने दोस्तों से प्यार करें। अगर आप किसी दोस्त से नाराज हैं तो आप जाके आंख बंद करके उसको गले लगाइए, और कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आपका ये अरमा ऐसे ही रहे। तो आप जाइए, अपने दोस्तों को गले लगाइए और दोस्ती में जिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। भाटिया जी, आपको यहाँ आके कैसा लगा?
1: भरत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे अपनी परिचर्चा में शामिल किया, तो ये मेरे लिए एक यादगार समय रहेगा आपके साथ बिताया हुआ, और आगे भी जब भी मुझे समय मिलेगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके स्टूडियो में आऊं

आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 12। आज के आमंत्रित मेहमान थे लेखक एक्टर अतुल भाटिया जी। प्रोग्राम रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, सहयोग निया जैन का। कार्यक्रम को निर्देशित व प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: नब्बे आशारिया सिफर FM पर सामायन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यू आर लिसनिंग FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: एक ही तलच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का। अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोली, और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओ, आज हम बात करेंगे दिल की, और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और साथ में रेडियो विविधता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अम्बाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कॉरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें। ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है। शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स, दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

0: जब दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं तो उसकी आवाज को टालिए नहीं। अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखें, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें। क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 9.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती है।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी ओर भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा आपदा अपना रेडियो। आप जी दी आवाज दिल तो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: है अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: नब्बे आशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

फिल्म गीतों का ये सफर आप तय करेंगे अपनी रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आदाब।

तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरी सांसों में बसी है खुशबू की तरह।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक, इन मौसमों के गुम हो जाने तक, कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पुर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

बस जिंदगी यूं ही गुजर गई बिना बात कहे, इस अंजुमन में बातें हुई पर वो बात रह गई जो सीने में

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद मैं अपनी बात कह पाता।

निकलते ही सुबह का उजाला एक नई उम्मीद को जन्म देती है। फूलों के चमन में बुलबुल शबनमी बूंदों में नहा रहे हैं और ये दौड़ते बादल सारे आकाश को नीला करते हुए खुद को छिपा रहे हैं बादलों की कतारों में। यह हमारी सुबह का आगाज मुस्कुराहट से भरपूर।

0: परछाइयों के इस शहर में अब खाली है मेरा आंगन। काश कहीं से धूप निकल आती, शायद हम उनके दीदार कर पाते, उनको फिर से अपने सीने की आग से रूबरू कराते और ये बताते कि मैं अभी भी सुलग रहा हूं तुम्हारी मोहब्बत में। तस्कीने दिल की खातिर वादा तो कीजिए, हम जानते हैं।
1: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो विद स्टार, हम सफर जिंदगी का।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता की एक खास पहल, डिजिटल दुनिया के खतरे से बचें। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY द्वारा एक प्रमुख पहल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस ISEA शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवर तैयार करना और आम जनता के बीच जागरूकता फैलाना है। आज के इस डिजिटल युग में जहां इंटरनेट और स्मार्टफोन ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान और रफ्तार भरी बना दिया है, वहीं दूसरी ओर एक काला सच भी हमारे सामने है, साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम। जब हम तकनीक का आनंद ले रहे होते हैं तो अनजाने में हम डिजिटल ठगों के निशाने पर भी होते हैं। साइबर अपराध का मतलब है इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से किए जाने वाले वे सभी गैर कानूनी काम जिनसे आम जनता को आर्थिक या मानसिक नुकसान पहुंचता है।
1: साइबर अपराध में क्या क्या चोरी हो सकता है, ये केवल पैसों की चोरी तक सीमित नहीं है, आपकी पहचान और आपकी निजता भी खतरे में है। निजी जानकारी, आपका नाम, पता, फोन नंबर और आधार विवरण, वित्तीय डेटा, बैंक खाता नंबर, क्रेडिट डेबिट कार्ड की जानकारी और पिन, डिजिटल पहचान, सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड, गोपनीय दस्तावेज, आपके निजी तस्वीरें, वीडियो और ऑफिस का महत्वपूर्ण डेटा।
0: साइबर अपराध आज एक ग्लोबल थ्रेट यानी वैश्विक खतरा बन चुका है। इसी खतरे की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा एक प्रमुख पहल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस ISEA शुरू की गई है। रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz जन जागरूकता अभियान, इसी कड़ी में रेडियो वितस्ता 90.0 MHz ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला की शुरुआत की है। कार्यक्रम साइबर सुरक्षा जागरूकता श्रृंखला के 8 विशेष एपिसोड और ये भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख पहल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस ISEA के द्वारा प्रायोजित है। इस श्रृंखला के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सुरक्षित बैंकिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी को कैसे बचा सकते हैं और ठगी होने पर कहां शिकायत दर्ज करा सकते हैं। याद रखिए, आपकी जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है। सुनना ना भूलें रेडियो वितस्ता 90.0 MHz पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम लाए हैं इस श्रृंखला का एपिसोड 5, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं भारत सोपोरी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में हमारा बटवा हमारी जेब में कम और हमारे मोबाइल फोन में ज्यादा रहता है। एक क्लिक पर पेमेंट, एक क्लिक पर शॉपिंग, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी एक क्लिक के पीछे शिकारी भी बैठे हैं। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, यानी कि आपके पैसे का ख्याल रखना, यानी कैसे हम अपनी मेहनत की कमाई को इन अदृश्य साइबर लुटेरों से बचाकर रख सके। धोखाधड़ी के बदलते तरीके यानी मॉडस ऑपरेंडी। दोस्तों, ठग अब पुराने जमाने की तरह ताला नहीं तोड़ते, बल्कि वे आपका भरोसा तोड़ते हैं। आजकल फाइनेंशियल फ्रॉड के 3 सबसे बड़े तरीके चल रहे हैं। नंबर 1, KYC अपडेट के नाम पर आपको मैसेज आता है कि आपका बैंक अकाउंट या सिम कार्ड बंद होने वाला है, बस इस लिंक पर क्लिक करें। नंबर 2, रिफंड या रिवार्ड का लालच। आपको 5,000 का कैशबैक मिला है, इससे लेने के लिए अपना UPI पिन डालें। याद रखिए, पैसे पाने के लिए पिन की जरूरत कभी भी नहीं होती है, सिर्फ देने के लिए होती है। नंबर 3, स्क्रीन शेयरिंग एप्स। ठग आपसे एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसे एप्स डाउनलोड करवाते हैं और देखते ही देखते आपके फोन का कंट्रोल लेकर आपका बैंक बैलेंस साफ कर देते हैं। इन चीजों से आप सभी को बचना होगा। थोड़ा सा ध्यान रखने के साथ साथ हम इन ठगों के चुंगल से अपने आप को बचा सकते हैं।
1: फाइनेंशियल सिक्योरिटी के सुरक्षा कवच। अब सवाल है कि हम खुद को सुरक्षित कैसे रखें? रेडियो विदस्ता पर नोट कीजिए ये चार जरूरी बातें। दो चरणीय प्रमाणीकरण, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अपने हर बैंकिंग ऐप और सोशल मीडिया पर इसे ऑन रखिए। ये आपके घर के डबल लॉक की तरह काम करता है।
0: पिन और ओटीपी की गोपनीयता। बैंक का मैनेजर भी आपसे कभी ओटीपी नहीं मांगेगा। अगर कोई मांगे तो समझ लीजिए वो ठग है।
1: अनजान लिंक से तौबा। किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें जो आपको मुफ्त उपहार या भारी डिस्काउंट का लालच दे। HTTPS वाली सुरक्षित वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें।
0: नियमित पासवर्ड बदलाव। अपने बैंकिंग पासवर्ड को हर 3 महीने में बदलें और इससे थोड़ा मुश्किल यानी कम्प्लेक्स रखें, जैसे नाम, अंक और स्पेशल कैरेक्टर्स का मिश्रण। अगर हादसा हो जाए तो समाधान क्या है? भगवान न करे अगर आपके साथ कोई वित्तीय धोखाधड़ी हो जाए तो घबरा कर बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको तुरंत ये 3 काम करने होंगे। नंबर 1, गोल्डन आर का लाभ। ठगी के पहले 2 घंटे गोल्डन आर कहलाते हैं। तुरंत 1930 यानी 1930 डायल करें। अगर आप जल्दी रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस ठग के खाते में पैसा फ्रीज कर सकती है। नंबर 2, ऑफिशियल पोर्टल फॉरन www.cybercrime.gov.in पर जाकर सबूतों के साथ जैसे ट्रांजैक्शन आईडी और स्क्रीनशॉट शिकायत दर्ज करें। नंबर 3, बैंक को 0 लायबिलिटी की सूचना। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार अगर आप 3 दिन के भीतर बैंक को सूचित करते हैं कि आपके साथ अनधिकृत ट्रांजैक्शन हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी सीमित हो जाती है और पैसा वापस मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। दोस्तों, आपकी वित्तीय सुरक्षा सिर्फ आपके पासवर्ड में नहीं, आपकी जागरूकता में है। डिजिटल बनिए पर सतर्कता के साथ। अपनी मेहनत की कमाई पर किसी लुटेरे का साया ना पड़ने दें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आपसे चाहूंगा इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सुरक्षित रहिए और खुश रहिए।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हमसफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 6, वरिष्ठ नागरिक कल्याणकारी योजनाएं। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आयोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट और निर्देशित किया भारत सोपोरी ने।

0: अरे बेटा लक्ष्मी, आज तू किधर रह गई है?
1: बस आई दुदू, क्या बात है? आप अपने श्रोताओं से मिलने के लिए बड़े उत्साहित हैं?
0: हाँ बेटा, उत्साहित तो हूँ, क्योंकि वो सब हमारे परिवारजन हैं, और अपने दोस्तों से मिलके किसको खुशी नहीं होती है बला।
1: बात तो ठीक कहते हो दुदू, चलिए मैं भी रेडी हो गई हूँ, आइए चलते हैं।
2: बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे देश भर के 200 सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में।
1: हमारे साथ है हमारी आन बान और शान, हमारे अभिमान, हमारे भारत दद्दो,
0: और ये है मेरी प्यारी खूब ख्याल रखने वाली पोती लक्ष्मी। और हम दोनों मिलकर एक बार फिर स्वागत करते हैं
1: आपका इस विशेष कार्यक्रम
0: हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं, और इससे लाभान्वित होने के तरीकों पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं।
1: ये विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच लेकर हाजिर हुए हैं।
0: इतना ही नहीं दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है, जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नीतियां बनाकर और नए कार्यक्रम को चला करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है।
2: कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीत काल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा?
3: हेलो,
4: हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 1-4-5-6-7। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा।
2: एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें, कौन सुनेगा बुजुर्गों की? अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 1-4-5-6-7 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाए, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 1-4-5-6-7 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी।
0: लक्ष्मी, एक दिन अपने वकील साहब है ना, अरे वो अपने दीपक बाबू।
1: हाँ क्या कहा उन्होंने?
0: अरे वो एकत्रित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के बारे में कुछ कह रहे थे। वो क्या होता है बेटी?
1: एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम IPSC भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुधारने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। IPSC का प्रबंधन भारत सरकार के वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
0: अच्छा बेटा, लेकिन ये तो बताओ लक्ष्मी कि इसमें होता क्या है?
1: अरे दद्दू बताती हूँ, परेशान क्यों होते हैं, आपको सब कुछ बताती हूँ। इस एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के तहत कई सारे लाभ वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाते हैं, जिसमें मासिक पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, आवासीय अनुदान, शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा जैसी कई सारी चीजें हैं।
0: देखो लक्ष्मी, ये मजाक का वक्त है क्या, या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ?
1: क्या हुआ दद्दू, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप?
0: वृद्धों को पेंशन कब से मिलने लगी और वो भी बिना कुछ किए?
1: ओहो दादू, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है ना, मगर मैं सच कह रही हूँ। भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने वृद्ध नागरिकों के लिए पेंशन योजनाएं शुरू कर रखी है। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप इनकी बात सुन लो दादू।
0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 6। इस विषय में हम आए हैं अग्रवाल कॉम्प्लेक्स और हम बात करेंगे श्री कमल भूषण शर्मा जी के साथ। आइए सुनते हैं वो पेंशन योजनाओं के बारे में और पेंशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं।
3: पेंशन गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की दी अच्छी स्कीम है जो कि बुजुर्गों को खाने के लिए या रोटी के लिए गुजारे के लिए मदद करती है, उससे प्रभाव चलता है, सारा कुछ उसी के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर बच्चों की स्पोर्ट ना भी हो तो आदमी अपनी रोटी खा सकता है, मेसों में पढ़ने के बजाय अपने घर में बैठे आराम से खाना खा सकता है और रोटी से गुजारा कर सकता है। बाकी यह है कि थोड़ी सी महंगाई को देखते हुए गवर्नमेंट को इसमें वृद्धि करनी चाहिए, जो कि हर बुजुर्ग का हक भी है और एक नागरिक, अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि हम गवर्नमेंट की सपोर्ट करें।
0: शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हम अपनी युवा अवस्था में होते हैं और हम घर परिवार को चलाते हैं, जब हम सीनियर सिटीजन या वृद्ध हो जाते हैं, भारत सरकार की जिम्मेदारी जो हर एक वृद्ध जन के लिए है, वो और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए जो उन वृद्ध जनों के लिए फायदे की बात हो सकती है, जो बुजुर्ग है वो भी सम्मान से जी सके?
3: एक तो यह है कि महंगाई के जमाने में सरकार को कुछ और सोचना चाहिए ताकि जो बुजुर्ग मियां बीवी है वो अपना अच्छे से गुजारा कर सके और अच्छे से अपना देखभाल कर सके, ताकि उनका घर चलता रहे, रोटी चलती रहे। और सरकार ने जो बड़ी अच्छी स्कीम बनाई हुई है जिससे कि आम बुजुर्ग लोगों को काफी मदद मिलती है और उससे उनका परिवार चलता है। आगे थोड़ी सी पहले इनको सहूलत थी कि रेल में वो सफर करते थे तो उनको सीनियर सिटीजन की थोड़ी कंसेशन मिलती थी, जो आजकल नहीं मिलती।
0: हाँ, जो अब नहीं है
3: वो मिलनी चाहिए ताकि बुजुर्ग आदमी भी कोई सफर कर सके तो आराम से उसको कम रेट में वो सफर कर सके, अच्छी तरह जी सके।
0: इसके साथ जुड़ा प्रश्न मैं एक और करना चाहता हूँ कि जो हमारे वृद्ध जन है उनके लिए खाना जरूरी है या इज्जत और सम्मान और समाज में उनका रुतबा ज्यादा होना चाहिए?
3: रुतबा तो ये है कि जीने के लिए खाना तो जरूरी है, रुतबा सरकार अगर पैसा देती है तो उनको इज्जत देती है, तो प्यार देती है, तो हम भी, हमारा फर्ज बनता है कि हम सरकार को पूरी इज्जत दें।
0: अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जो पेंशन योजना के अंतर्गत आपको पेंशन मिल रही है, आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं?
3: पेंशन मिल रही है, अच्छी बात है, 3,000 पेंशन मिल रही है, उससे गुजारा हो रहा है थोड़ा बहुत, और उसमें थोड़ी सी वृद्धि भी सरकार को करनी चाहिए महंगाई को देखते हुए।
0: हम आए हैं यहाँ पर शर्मा जी के पास, और जो उनके सुझाव है, और ये सरकार के लिए शुक्रगुजार भी हैं, और इनका ये कहना है कि जितना भी पेंशन वृद्ध जनों को मिलती है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि और अच्छे से और सम्मान के साथ वो अपनी जिंदगी जी सके। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: बहुत बहुत शुक्रिया, गवर्नमेंट का भी और आपका भी
0: बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
1: अब तो विश्वास हुआ ना दादू मेरी बात का?
0: हाँ बेटा, लेकिन लेकिन
1: ओहो दादू, अब बोली भी लेकिन क्या?
0: बेटा, ये पेंशन योजना तो वरदान है बुजुर्गों के लिए। कब शुरू हुई है ये योजना, इसका नाम तो बताओ तुम।
1: दादू, वृद्ध अवस्था में पेंशन के लिए एक नहीं कई योजनाएं हैं, जिनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना है, जो 1995 में शुरू की गई थी। वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना सहित अनेक योजनाएं शामिल हैं।
0: अच्छा, तो दीपक बाबू इसी की बात कर रहे थे क्या? इसका लाभ क्या है बेटी, ये तो बता।
1: दादू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना के तहत वृद्धों को मासिक पेंशन दी जाती है।
0: अरे वाह, लेकिन ये योजना काम कैसे करती है?
1: ये योजना मुख्य रूप से 60 साल और उसके ऊपर के वृद्ध लोगों के लिए है, जिनके पास कोई मजबूत आर्थिक साधन नहीं होते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार उन्हें एक नियमित पेंशन प्रदान करती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना का उद्देश्य वृद्ध अवस्था में जब व्यक्ति का जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है और उनके पास कोई स्रोत नहीं होते, उन्हें एक नियमित पेंशन राशि देना है। ये राशि उन्हें उनकी जिंदगी की अंतिम अवस्था तक मिलती रहती है। योजना के तहत वृद्ध लोगों को हर महीने एक निश्चित राशि की पेंशन दी जाती है, और ये राशि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और छवि के अनुसार तय की जाती है। योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर है और जिनके पास कोई मजबूत आय का स्रोत नहीं है।
0: मतलब इस योजना में आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए, जैसे कि कोई नियमित आय का स्रोत ना हो, बस इतना ही ना?
1: इतना ही नहीं दादू, कुछ मामलों में तो यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है।
0: अब बिटिया, हमारे साथी और इंतजार नहीं कर सकते, फटाफट बता दे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी।
1: बहुत आसान है दादू, आयु का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या गरीबी रेखा से संबंधित कोई दस्तावेज, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट की कॉपी, बैंक खाता है, क्योंकि पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है, इसलिए आपके बैंक खाते का विवरण, बस यही मामूली कागजातों की जरूरत है दादू।
0: अरे पगली, वो सब तो ठीक है, मगर ये बता, इसके लिए कुछ फार्म वारम भी भरना पड़ेगा कि नहीं? कहाँ भरेंगे वो फार्म, कैसे भरेंगे, कुछ तो बताएगी।
1: आसान है दादू, इसके लिए हमारे बुजुर्ग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और कार्यालय जाकर भी। ऑनलाइन आवेदन में आप अपनी नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन में आप अपने गांव या शहर के नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय या पंचायत कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको अपने दस्तावेज जमा करने होंगे और उसके सत्यापन के बाद बस हो गया काम, है ना आसान दादू?
0: अरे वाह, बहुत खूब बेटा, इतना आसानी से और सरल तरीके से समझा दिया तूने कि सबको समझ में आया होगा। वैसे ये योजना तो कमाल की है।
6: अरे भारत भाई, कैसे हो आप? भारत भाई, मैंने अपनी कुछ जमीन बेची थी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आपकी पोती तो बाहर रह के पढ़ती है। अरे भाया, पूछ के बताओ ना कुछ, जिससे मुझे कुछ मासिक आय भी मिलती रहे।
0: ठीक है भाई, जरूर पूछ के बताता हूँ। तब तक आप सुनते रहिए अटल वयो अभ्युदय योजना पर प्रसारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान।
6: ठीक है भाया।

0: अरे वाह, लक्ष्मी तो अब सेलिब्रिटी बन गई है। शाबाश बेटा,
1: सब आपके आशीर्वाद का कमाल है दद्दू।
0: अच्छा ये बता लक्ष्मी कि उनके पास जो पैसे हैं, वो कहाँ निवेश करें?
1: सबसे सुरक्षित है इसके लिए तो प्रधानमंत्री वाई वंदन योजना।
0: अब ये क्या है बेटी, ये नई कौन सी योजना आसमान से टपक पड़ी?
1: प्रधानमंत्री वाई वंदन योजना भारत सरकार द्वारा वृद्ध नागरिकों के लिए बनाई गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिससे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित पेंशन प्रदान करना है, ताकि उन्हें वृद्ध अवस्था में वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को निवेश पर एक सुनिश्चित ब्याज दर के साथ पेंशन मिलती है, जो उन्हें बाजार में ब्याज दरों से उतार चढ़ाव के बावजूद एक स्थिर आय प्रदान करती है।
0: अच्छा, यानी तू ये कहना चाहती है कि इसमें पैसे जो जमा किए हैं, वो भी सुरक्षित रहेंगे और पेंशन भी मिलेगी। आम तो आम, गुठलियों के भी दाम।
1: बिल्कुल ठीक समझे दद्दू। ये योजना विशेष रूप से 60 वर्ष और उसके अधिक आय के नागरिकों के लिए बनाई गई है और इसका कार्यकाल 10 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री वाय वंदन योजना में पेंशन की राशि निवेश की गई राशि पर निर्भर करती है और पेंशन को मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर लिया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वे नियमित आय का स्रोत प्रदान करना है।
0: कितनी ब्याज दर है इसमें बेटा, और कितने समय के लिए है ये योजना?
1: इस योजना का कार्यकाल 10 वर्षों का होता है, यानी एक बार निवेश करने पर आपको 10 वर्षों तक पेंशन प्राप्त होती है। ये योजना एक सुनिश्चित ब्याज दर प्रदान करती है, जो सरकार द्वारा तय की जाती है। ब्याज दर सालाना होती है और ये योजना अवधि के लिए निश्चित रहती है।
0: वो सब तो ठीक है, लेकिन योजना का लाभ कैसे लेंगे?
1: योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। इसके साथ ही प्रक्रिया भी बता देती हूँ आपको, वरना मन में संकोच करोगे। इस योजना में निवेश करना बहुत सरल है। स्टेप वन में सबसे पहले किसी भी नजदीकी LIC शाखा कार्यालय में जाकर योजना के आवेदन पत्र प्राप्त करें या LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। स्टेप टू, आवेदन पत्र को भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें। इनमें पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक चेक शामिल है। स्टेप तीन, आपके द्वारा जमा की गई जानकारी के आधार पर LIC आवेदन की समीक्षा करेगा। स्वीकृत के बाद आप अपनी पसंद के अनुसार भुगतान मोड का चयन कर सकते हैं। स्टेप चार, योजना में प्रवेश होने के बाद आपको पॉलिसी बॉन्ड प्रदान किया जाएगा और पेंशन भुगतान आपके द्वारा चुने गए विकल्प मासिक, तिमाही आदि के अनुसार शुरू हो जाएगा।
0: अच्छा, मगर बेटा मान लो किसी को कोई गंभीर समस्या आई तो?
1: इस योजना के तहत पॉलिसी धारक की गंभीर बीमारी की स्थिति में समय से पहले निकासी की सुविधा भी है। इस स्थिति में जमा राशि का 98% वापस कर दिया जाता है। साथ ही 3 वर्षों के बाद इस योजना पर लोन लिया जा सकता है। अधिकतम लोन राशि योजना में जमा की गई राशि का 75% होती है।
0: अब फटाफट बता दे, जरूरी कागजात कौन कौन से होंगे?
1: आधार कार्ड पहचान के लिए, पैन कार्ड टैक्स संबंधी जानकारी के लिए, बैंक खाता विवरण पेंशन राशि बैंक खाते में जमा करने के लिए और पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पत्र के साथ जमा करना होता है।
2: हमारे बुजुर्ग ना हो निराश, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने मिलकर जगाई है उनके लिए नई आश। जी हाँ, राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई योजनाएं चला रही है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक समावेशन के लिए नीतियां और कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। वृद्धाश्रम और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। बुजुर्गों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उनकी गरिमा और आत्मनिर्भरता को बनाया जा रहा है और भी सुविधायुक्त। साथ ही राज्य कार्य योजना की मुख्य घटकें हैं स्वास्थ्य सेवाएं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है और फ्री हेल्थ चेकअप और नियमित मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए गैर संचारी रोगों का उपचार आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष से अधिक हर तरह के बुजुर्गों को मिल रहा है आयुष्मान कार्ड का लाभ। वित्तीय सहायता और पेंशन के लिए कमजोर आय वर्ग के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। आवास और आश्रय के लिए हर जिले में वृद्धाश्रम की स्थापना, बेघर बुजुर्गों को आश्रय प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही भोजन और पोषण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए सस्ते दरों पर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराए जाने का कार्य भी किया जा रहा है। तो आप बुजुर्गों, बस आप हो जाइए तैयार, क्योंकि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार कर रही है अपने बुजुर्गों का सत्कार। जी हाँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित
1: ये था हमारा आज का हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का अंक, जिसमें आपने जाना अटल वियो अभ्युदय योजना और वृद्ध जनों के लिए पेंशन योजनाओं के बारे में, जिसे आप सुन रहे थे अपने रेडियो FM 90.0 MHz पर। इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से और सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में।
0: दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है, जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1-4-5-6-7 लगा सकते हैं।
1: तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है।
0: इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है और
1: हमारा भारत देश महान,
0: हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान।
1: तो अब हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से, और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय,
0: नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एपिसोड 6 वरिष्ठ नागरिक कल्याणकारी योजना, प्रस्तुत किया किरणी दास ने लक्ष्मी के किरदार में और भरत सोपोरी ने दद्दू के किरदार में। इस एपिसोड में कॉल करने वाले वृद्ध की आवाज दी राहुल अल्यान ने। इस कार्यक्रम के लिए वॉइस बाइट दी थी वरिष्ठ नागरिक श्री कमल भूषण शर्मा जी ने और हमारा साथ हमारे मेंटर श्री प्रवीण पुंज जी का। इन दोनों का विशेष धन्यवाद। रिकॉर्डिंग, एडिटिंग व निर्देशन भरत सोपोरी का। ये कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन व सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: Amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: आइए जानते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है आंगनवाड़ी के लिए। भारत जी, अब बात करते हैं इस पूरी मुहिम में सरकार की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी साझा तो है पर शुरुआत सरकार को ही करनी होती है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो 2018 में शुरू हुआ पोषण अभियान, जिससे अब मिशन पोषण 2.0 के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद है कुपोषण के मुद्दे को जड़ से, यानी एक जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर हल करना, गर्भवती महिला से लेकर छोटे बच्चे और किशोरियों तक।
0: और इसी के साथ चल रहा है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम, जिसके तहत देश भर के करीब 2,00,000 आंगनवाड़ी केंद्र को हर साल करीब 40,000 की दर से सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है।
1: इसका मतलब क्या है अनु, थोड़ा समझाइए हमारे श्रोताओं को।
0: इसका मतलब है बेहतर भवन, पीने के पानी की सुविधा, चालू हालत में शौचालय, हाथ धोने के लिए साबुन, बच्चों के खेलने और सीखने के लिए बेहतर माहौल। सरकार ने तो आंगनवाड़ी भवन निर्माण की लागत भी बढ़ाई है। पहले जो राशि 12,000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 36,000 रुपए कर दिया गया है, ताकि केंद्र मजबूत और सुविधाजनक बन सके।
1: और गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं ना?
0: जी हाँ, सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाली भोजन की गुणवत्ता बनी रहे। हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट को इसकी निगरानी के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है, और हर महीने एक जिला पोषण समिति की बैठक होती है, जिसमें प्रगति की समीक्षा होती है।
1: और डिजिटल निगरानी के लिए भी कुछ किया गया है?
0: बिल्कुल, पोषण ट्रैकर ऐप, यह मार्च 2021 से शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण है, जिसके जरिए हर आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों, बच्चों के वजन, लंबाई और पोषण स्थिति का रियल टाइम डेटा दर्ज होता है। आज इस पर करोड़ों लाभार्थी पंजीकृत है।
1: यानी सरकार अब सिर्फ योजना बनाकर नहीं छोड़ रही, बल्कि उसकी निगरानी और जवाबदेही भी सुनिश्चित कर रही है।

0: आइए अब जानते हैं आंगनवाड़ी बच्चों के लिए कितनी सहयोगी हो सकती है। भारत जी, अब बात करते हैं कि यह सब बच्चों के लिए असल में कितना मायने रखता है।
1: देखिए अनु, आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ खाना बांटने की जगह नहीं है, ये 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और शुरुआती शिक्षा यानी प्रारंभिक बाल अवस्था विकास का सबसे पहला और सबसे अहम केंद्र है।
0: सही कहा, अगर किसी बच्चे को शुरुआती सालों में सही पोषण और देखभाल मिल जाए तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास जीवन भर के लिए मजबूत नींव पर टिकता है। और यही वजह है कि कामकाजी महिलाओं के लिए भी सक्षम आंगनवाड़ी, क्रेच और सखी निवास जैसी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं, ताकि माँ काम पर जाए तो बच्चा सुरक्षित हाथों में रहे।
1: और किशोरियों के लिए भी तो अलग से ध्यान दिया जा रहा है अनु।
0: जी हाँ, पोषण 2.0 के तहत पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में लाखों किशोरियों की पहचान की गई है, ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले और स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
1: यानी ये सिर्फ छोटे बच्चों तक सीमित नहीं, बल्कि किशोर अवस्था तक फैला हुआ एक व्यापक ढांचा है।

0: आइए अब जानते हैं जन भागीदारी और समाज की भूमिका।
1: तो भारत जी, अब सवाल यह उठता है कि हम आम नागरिक इसमें क्या योगदान दे सकते हैं।
0: बहुत कुछ अनु। सबसे पहले तो अपने आसपास के आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़िए। अगर वहाँ पानी, शौचालय या साफ सफाई की कोई कमी दिखे तो उसे स्थानीय प्रशासन तक पहुँचाइए। बच्चों को नियमित रूप से केंद्र भेजिए। पोषण संबंधी जानकारी अपने पड़ोसियों और परिवार के साथ बांटिए।
1: और यही तो पूरी थीम का सार है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जब तक समुदाय खुद आगे बढ़कर इसे अपना नहीं मानेगा, तब तक सिर्फ सरकारी योजनाएं पूरा असर नहीं दिखा पाएंगी।
0: बिल्कुल सही, यही वजह है कि इस साल के अभियान में जन भागीदारी का केंद्र बिंदु बनाया गया है। रैली, गोद भराई, अन्नप्राशन जैसे कार्यक्रम, पोषण मेले, ये सब आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हर परिवार इस मुहिम से सीधे जुड़ सके।
1: तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमने जाना कि राष्ट्रीय पोषण माह 2026 सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां सरकार, समाज और परिवार मिलकर हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं।
0: बिल्कुल अनु, आंगनवाड़ी केंद्र मजबूत होगा तभी हमारा भविष्य यानी हमारे बच्चे मजबूत होंगे। और ये जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं, हम सब की है।
1: पोषण केवल भोजन से जुड़ा विषय नहीं है, यह हमारे देश के आने वाले भविष्य और मानव संसाधन के विकास से जुड़ा मुद्दा है।
0: बिल्कुल सही, FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं, अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े और वहां उपलब्ध सरकारी सुविधाओं की जानकारी लें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण में सहयोग करें। पोषण अभियान को एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर अपने परिवार और आसपास जागरूकता फैलाएं।
1: क्योंकि जब हर घर सही पोषण पाएगा तभी हमारा भारत कुपोषण मुक्त और सशक्त बन पाएगा।
2: पोषण से खुशहाल बने हर बच्चा।
0: इसी जानकारी के साथ अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आप सुनते रहिए आपका अपना और मनपसंद रेडियो स्टेशन FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, जो आपकी जिंदगी का हमसफर है और साथ ही आपके जीवन का प्रवाह भी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं हम विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूँ। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार।

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की ये रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

सुनिए और सुनाइए रेडियो हितसत्ता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो हितसत्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो हितसत्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: गवाही बड़ी। अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की ये रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आरडी सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश

देश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति। पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अंबाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अंबाला की धरोहर के बारे में जाने। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज, दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।
3: आवाज की दुनिया के दोस्तों को नरेश शर्मा का प्यार नमस्कार। आज से 4 साल पहले रेडियो वितस्ता के इस पौधे का रोपण किया गया था, और इन 4 सालों में हमने अपनी कला से, अपनी मेहनत से इसको बहुत सींचा है। और इसको सींचने के बीच में रेडियो वितस्ता के फाउंडर डायरेक्टर भरत सपोरी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और दोस्तों, इसको सींचते सींचते आज ये इस अवस्था के बीच में आ गया है कि आज ये बहुत बढ़िया फल भी दे रहा है और इसकी खुशबू भी हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य के बीच में रेडियो वितस्ता के 4 वर्ष पूरे होने पर आज हमने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है, महिला काव्य गोष्ठी। और आज के इस कार्यक्रम के बीच में हमारे साथ जानी मानी कवयित्रियां मौजूद हैं। मैं सबसे पहले हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे मौजूद मेहमान दिया शर्मा जी, आपका स्वागत करता हूँ।
4: धन्यवाद सर।
3: और इनके साथ हैं अंजलि सिफर। आप ये सोचिएगा, सिफर, इस सिफर में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अगर सिफर ना हो तो मैं तो भी नहीं होता अंकों का। जब सिफर लगती है तो अपने महत्व को कई गुना बढ़ा देती है। तो मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अंजलि सिफर जी का रेडियो वितस्ता के आज के इस विशेष कार्यक्रम के बीच में।
4: बहुत शुक्रिया।
3: और इन दोनों के साथ में एक ऐसी खूबसूरत आवाज हमारे साथ में है जो आपको महकने पर मजबूर कर देगी, और वो बहुत दिव्य आवाज है दिव्या भसीन कोछड़ जी।
4: बहुत शुक्रिया।
3: हमारे साथ ये 3 हस्तियां हैं जो आज काफी कुछ करेंगे, कुछ बातें करेंगे, इनके साथ में कुछ खट्टी मीठी, इनसे इनके अनुभव जानेंगे और साथ में इनकी कला का हम आनंद उठाएंगे। तो मैं सबका परिचय दे चुका हूँ। आज का हमारा जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का शीर्षक है सफर एहसासों का। तो सफर एहसासों का के बीच में हमारे सभी दर्शकों का और श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक परिचय से करवाता हूँ, और वो परिचय है दिव्या भसीन कोछड़ जी का।
5: हमारा आज है जो कल, वही इतिहास होगा फिर। हमारा आज है जो कल, वही इतिहास होगा फिर। नई पीढ़ी को दे पाए क्या ये एहसास होगा फिर। नई पीढ़ी को दे पाए क्या ये एहसास होगा फिर। अगर भाषा या मजहब पर झगड़ते रह गए हम तो, अगर भाषा या मजहब पर झगड़ते रह गए हम तो, नहीं रस खान गालिब और न तुलसीदास होगा फिर। नहीं रस खान गालिब और न तुलसीदास होगा फिर।
3: वाह क्या बात है, नहीं रस खान न तुलसीदास होगा
4: फिर। बहुत शुक्रिया सर।
3: बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज के बीच में आपने पेश किया। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप सभी को और अपने सुनने वालों और जो हमारे दर्शक है उनको भी, शंख तुम चुन लो सीप मैं चुन लू, शंख तुम चुन लो सीप मैं चुन लू, क्या पता फिर ये चुंबन मिले ना मिले। शंख तुम चुम लो सीप मैं चुन लू, क्या पता फिर ये चुंबन मिले ना मिले। रेडियो वितस्ता की खुशबू को सहज लो दिल में, रेडियो वितस्ता की खुशबू को सहज लो दिल में, क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले। क्या
4: बहुत अच्छे सर।
3: तो अभी आपको परिचय के रूप में मैंने आपके सामने पेश किया जो हमारे आज की मेहमान दिव्या भसीन कोछड़ जी हैं, और इनके साथ मैंने आपको जैसा पहले परिचय दिया ही था कि हमारे साथ हैं दिया शर्मा। दिया अपने आप में ही एक रोशनी है और ये जहां से शुरू होती है वहां से अंधकार को दूर कर देती है। तो कला के रूप में अपनी रोशनी को बहुत जगह बिखेर चुकी है और आज उसी रोशनी से हम सबको प्रज्वलित करने के लिए रेडियो वितस्ता के स्टूडियो के बीच विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं। आइए सुनते हैं दिया शर्मा जी। दिया जी कैसी हैं आप?
4: मैं कैसी हूँ? बेहद खूबसूरत किताब से। वाह, बेहद खूबसूरत किताब सी हूँ जिसमें अनगिनत पन्ने हैं।
6: क्या बात है,
4: जिन पर अनगिनत ख्वाब, ख्याल, खूबसूरत एहसास हर एक पन्ने पर स्याही ने बिखेर रखे। बेहद खूबसूरत किताब सी।
3: वाह वाह, क्या बात है, बहुत
4: वह किताब जो अच्छे पाठकों को बेहद पसंद हो। वह किताब जो अच्छे पाठकों को बेहद पसंद हो, जैसे अमृता प्रीतम का इश्क हो।
3: वाह वाह,
4: जिंदगी के हर पड़ाव को झेलती हुई अल्हड़ सी, नादान सी और कभी कभी कहीं कहीं बेहद परिपक्व भी, कभी सूखे पतझड़ सी, कभी वासंती बहारों सी, कभी कभी पुरवैया की मदमस्त बयारों सी और कभी सावन की ठंडी फुहारों सी और कभी कभी सर्दी की ठिठुरन सी और कभी सर्दी में जलता अलाव सी और कभी कभी ठंडी छांव सी और भी न जाने क्या क्या, कितना कुछ। सचमुच मैं बेहद खूबसूरत किताब सी।
3: क्या बात है, सचमुच मैं बहुत खूबसूरत।
4: जिसके एक पन्ने को पढ़ो तो अगले पन्ने पढ़ने को जी जाए। बिल्कुल वही किताब। हाँ, सब कुछ है इस किताब में, सब कुछ, मगर वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कवर पेज, जिसको जिल्द कहते हैं, मतलब कवर पेज नहीं है बस इस किताब का, कुछ पन्ने हैं बस वही किताब है। बाकी किताब बेशानदार और जानदार है। अरे हाँ, कोई नाम भी तो नहीं है ना इस किताब का, और भला हो भी कैसे, नाम तो जिल्द पर होता है, मतलब कवर पेज पर होता है ना, और जिल्द तो है ही नहीं, मतलब कवर पेज तो है ही नहीं। खैर, फिर खूबसूरत किताब बिना जिल्द के।
3: बहुत खूब, बहुत खूब जवाब। दर्शकों, देखा आपने इस खूबसूरत किताब जिसका नाम दिया शर्मा है, इसने अपने चंद शब्दों से ही सारे मौसमों का एहसास करा दिया। गर्मी भी, सर्दी भी, बरसात भी, ठंड की ठिठुरन भी और एहसासों की तपिश भी, क्या नहीं छुरा। खैर, बहुत खूब दिया जी, और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और मधुर स्वर के बीच में सुनते हैं हमारी अगली मेहमान अंजलि सिफर जी।
7: एक कलाकार का परिचय शायद उसका सुखन, बेहतरीन उसका परिचय है, तो मैं अपने सुखन की बात करती हूँ। सुखन मेरा मेरे मन के मनकों की है एक माला, कहीं हिंदी कहीं उर्दू का मोती इसमें है डाला। लिया एक प्रेम का धागा, मोहब्बत की गिरह बांधी, विचारों की ही अभिव्यक्ति को है अल्फाज में ढाला। विचारों की ही अभिव्यक्ति को है अल्फाज में ढाला।
3: बहुत ही गहरी बात अब कह गए हैं अंजलि सिफर जी के, विचारों की अभिव्यक्ति को, क्या बात है, इन्होंने शब्दों में ढालकर हमें सामने पेश किया। और दोस्तों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो तीन हस्तियां हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बातचीत का सिलसिला भी होना चाहिए ताकि हम इनको थोड़ा सा जान पाए, पहचान पाए। इनकी कला तो हमारे सामने आ ही रही है, तो जान पहचान का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले अब मेरे बाईं तरफ जो बैठी हुई हैं हमारी आज की मेहमान दिव्या हसीन कोछड़ जी। दिव्या जी, आप अब इसके पश्चात हमें क्या सुनाएंगी?
7: जो कहेंगे सर।
3: पसंद आपकी है, लेखनी आपकी है, जो आप चाहें वो बताइए कि हाँ ये मैं सुनाना चाहती हूँ। ईश्वर ने आपको कई चीजों से नवाजा है, यानी खूबसूरत आवाज, खूबसूरत कला और उसके साथ में खूबसूरती। क्या कभी आपने किसी के साथ प्यार किया है?
7: मतलब माता पिता अपने और अपने बच्चों से, अपने पतिदेव से, अपने परिवार से, और जो जो मुझे अच्छा लगा जिंदगी में, मेरे दादा दादी जिनके मैं बहुत करीब रही।
3: तो आइए पहले सुनते हैं वो जो आप सुनाना चाहते हैं।
7: जी सर, एक छंद है। घर में बंटवारे की स्थिति हर किसी के घर में होती है, लेकिन ये बंटवारा कभी कभी तो आपसी साझेदारी से होता है और कभी कभी मन भेद और मतभेद के साथ होता है। तब कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है।
3: जी पेश कीजिए।
7: कि खून आंख भर आया, शत्रु लगे मां का जाया, भाई भाई के अलग क्यों विचार हो गए, शब्दों के लगे तीर बढ़ती गई थी पीर, टूट कर एक से दो परिवार हो गए, रिश्तों के खून सनी मिली हमें देहरी भी, चीखते थे चोटिल जो सब द्वार हो गए, और आंगन खड़ी दीवार देख रही मालाचार, सोचती गलत कहां संस्कार हो गए, सोचती गलत कहां संस्कार हो गए।
3: बहुत वास्तविक बात आपने वो कही है जो आजकल हमारे जीवन के बीच में घटित होती है। कहां पर संस्कार गलत हो गए वहां सोचती ही रह जाती है, लेकिन जो साथ है असल में उसका असर होता है। संस्कार, माँ बाप जो संस्कार देना चाहते हैं वो अपनी जगह पे रह जाते हैं, और जो हम लोगों का साथ होता है वो अपना रंग छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आओ सीखे एक नया दौर बंदगी का, आओ सीखे एक नया दौर बंदगी का, गम परेशानी गुर्बत करें दूर जो किसी का, गम परेशानी गुर्बत करें दूर जो किसी का, रेडियो विदस्ता बने आपके दिल की आवाज, रेडियो विदस्ता बने आपके दिल की आवाज। आप भी बार बार कहें यही है, यही है, यही है हम सफर जिंदगी का, हम सफर जिंदगी का। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम को लेकर, सुनते हैं अंजलि सिफर जी को। अंजलि जी, आप अपनी जो भी रचना कहना चाहेंगी, आप काफी अनुभवी हैं, बहुत जगह के ऊपर आप कार्यक्रम दे चुकी हैं और देती रहती हैं। अपने जीवन की कोई ऐसी घटना मुझे बताइए कार्यक्रम के दौरान जो आपको अभी तक ना भूली।
7: ये तो इस तरह से बहुत सी घटनाएं होती हैं, लेकिन हाँ, मैं अपने जो मेरा ये सफर शुरू हुआ जिससे लेखनी का, उससे जुड़ी एक घटना ये जरूर मैं साझा करना चाहूंगी कि एक कविता मैंने भेजी अखबार में छपने के लिए, और शाम को ही मुझे एक फोन आता है कि क्या आपने अपनी कविता पढ़ी। तो मैं हैरान हुई कि तो मैंने आज सुबह मेल किया है, तो आज का अखबार तो आ चुका है, तो शाम को कैसे, मतलब ये मैं पढ़ सकती हूँ? तो उन्होंने बोला आप फेसबुक पर हैं? हूँ। तो ठीक है, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप देखिए। और मेरे लिए ये फेसबुक की दुनिया लेखन से जुड़ी हुई एक एलिसन वंडरलैंड की तरह थी। मैं नहीं जानती थी कि इस तरह से फेसबुक पर भी लोग लिखते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं, और जब मैंने अपनी कविता देखी तो उस पर उस समय तक कुछ 50 से लगभग ज्यादा कमेंट्स आ चुके थे, जो मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। और मैं ये कहूंगी कि इसी चीज ने मेरे लिए आगे के लिए जो है वो सृजन का रास्ता खोला। हालांकि सृजन का सफर मैंने लगभग 20 साल पहले रफ कॉपी में जरूर शुरू कर चुकी थी, तो रफ कॉपी से दुनिया तक पहुंचने का ये जो सफर है वो फेसबुक के माध्यम से इस छोटी सी घटना ने शुरू किया, तो ये मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकूंगी।
3: तो ये आप सुन रहे थे सिफर का सफर। तो आइए आप सुनते हैं इनकी ये रचना।
7: जी रेडियो विदस्ता की चौथी वर्षगांठ है, बहुत बधाई देते हुए सभी को। और आपने महिला काव्य गोष्ठी से शुरुआत की, तो तमाम नारी शक्ति को मैं समर्पित करती हूँ अपनी गजल। किसी सहरा में हरियाली की सूरत हूँ मैं औरत हूँ, किसी सहरा में हरियाली की सूरत हूँ मैं औरत हूँ, सफर में धूप के साए से राहत हूँ मैं औरत हूँ।
3: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
7: सफर की धूप में साए से राहत हूँ मैं औरत हूँ, और हवा आकाश मिट्टी जल अगन भी है जरूरी पर, हवा आकाश मिट्टी जल अगन भी है जरूरी पर, नए जीवन की एक मैं भी जरूरत हूँ मैं औरत हूँ।
3: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
7: बहुत शुक्रिया। चढ़ू मैं चाक पर हर बार एक मिट्टी नई बनकर, न सिर्फ महिला शक्ति, सभी लोग मुझे लगता है इससे सहमत होंगे। चढ़ू मैं चाक पर हर बार एक मिट्टी नई बनकर, मगर हर रूप में केवल मोहब्बत हूँ मैं औरत हूँ।
5: बहुत अच्छे, बहुत
7: अच्छे। नहीं हूँ चीज में कोई सजावट की जरूरत की, नहीं हूँ चीज में कोई सजावट की जरूरत की, रहूं जिस घर में भी उसकी मैं बरकत हूँ मैं औरत हूँ। और आखिरी दो पंक्तियां रखती हूँ कि मैं हूँ वो मोम जो अश्कों की गर्मी से पिघल जाए, मैं हूँ वो मोम जो अश्कों की गर्मी से पिघल जाए, सिफर टकराने पर आऊं तो पर्वत हूँ मैं औरत हूँ।
5: बहुत बढ़िया।
7: किसी सहरा में हरियाली की सूरत हूँ मैं औरत हूँ, सफर की धूप में साए से राहत हूँ।
3: क्या खूब कहा है आपने, बहुत बहुत बेहतरीन, इतनी बारीकी से, इतने करीबी से, इतने नाजुकता से जो आप शब्द कह गए कि मैं वो मोम हूँ जो अश्कों की गर्मी से भी पिघल जाए। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। अंजलि जी, वास्तव में पता लगता है कि आपकी कलम की धार क्या है। तो दुनिया आपको सुनना पसंद करती है। आज मैं जानना चाहूंगा अपने रेडियो विदस्ता के जितने श्रोता हैं और दर्शक हैं उनके समक्ष आप क्या सुनना चाहेंगे। आज हम आपको वो सुनाते हैं जो आप सुनना चाहती हैं।
7: अरे वाह, मेरा नाम जोकर का गीत है, एक जीना यहाँ मरना यहाँ, अगर वो सुना दे आप तो फिर बन जाए
3: निश्चित। तो आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं अंजलि सिफर जी का पसंदीदा, जो इनके दिल के करीब है, वो गीत फिल्म मेरा नाम जोकर से, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।

0: रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।
1: तो श्रोता, सुना आपने ये जो हम सुन रहे थे ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वास्तव में जिंदगी तो यहीं से शुरू होती है और यहीं पे खत्म होती है। इसके बाद जो दूसरी जिंदगी है ना, लाइफ आफ्टर डेथ, उसका तो किसी को नहीं पता, क्योंकि किसने जाकर चिट्ठी लिखी है कि मैं यहां पहुंच गया हूं और कैसा हूं। दीपा जी ने बता दिया, दिया जी ने बताया कि मैं कैसी हूं। इन्होंने अपने कुछ पन्नों की बातें की थी, उन पन्नों के ऊपर एहसासों की बिखरी हुई स्याही के जो शब्द हैं, उनसे हमें रूबरू कराया। इन्होंने सारी ऋतुएं चंद शब्दों के बीच में ही हमारे सामने ले आए। आइए अब सुनते हैं दिया शर्मा जी से इनकी ये रचना।
2: धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं रेडियो वितस्ता के चौथी वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको देती हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ईश्वर से प्रार्थना है कि रेडियो वितस्ता नित्य प्रति उन्नति पथ पर अग्रसर रहे और विश्व भर में रेडियो वितस्ता का नाम हो, सब इसको सुने।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और रेडियो वितस्ता के लिए मैंने दो पंक्तियां लिखी थी, वह रखना चाहूंगी। रेडियो वितस्ता खूब चले, चले दिवस और रैन। रेडियो वितस्ता खूब चले, चले दिवस और रैन। फेसबुक पर लाइव देख इसके बढ़ते जाएं फैन।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे।
2: फेसबुक पर लाइव देख इसके बढ़ते जाएं फैन। और दो पंक्तियां और रेडियो वितस्ता के ही नाम करना चाहूंगी।
1: जी जी।
2: जो सबसे सबकी पहचान कराए, जो सबसे सबकी पहचान कराए, यह वो रास्ता है। जो सबसे सबकी पहचान कराए,
1: यह
2: वो रास्ता है। दुनिया भर में प्रचारित प्रसारित रेडियो वितस्ता है।
1: वाह वाह वाह,
2: रेडियो वितस्ता है।
1: ईश्वर करे आपकी कामना जल्द पूर्ण हो, दुनिया भर में प्रचारित प्रसारित रेडियो वितस्ता है। जी,
2: मेरी शुभकामनाएं। और एक छोटी गजल रखूंगी।
1: जी।
2: जिंदगी से मलाल क्या करना, जिंदगी से मलाल
1: क्या करना,
2: बेवजह फिर ख्याल क्या करना।
1: वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
2: शुक्रिया। सिर्फ खामोशियां जवाब हैं तो उल्टे सीधे सवाल
1: क्या करना। ये आप मुझ पे तंज कस रही हैं, बहुत खूब। बहुत खूब, कोई बात नहीं।
2: खामोशियां, सिर्फ खामोशियां जवाब हैं तो उल्टे सीधे सवाल क्या करना, जिंदगी से मलाल क्या करना। जीत दोनों तरफ उन्हीं की है, ये आपको समर्पित। अभी आपने बोला है कि मुझ पर तंज, तो उसका ये मेरा प्रत्युत्तर कि जीत दोनों तरफ उन्हीं की है, फिर भी सिक्का उछाल क्या करना।
1: जी,
2: दोनों तरफ उन्हीं की है, फिर भी सिक्का उछाल क्या करना। दर्द आदत में यूं भी शामिल है, दर्द आदत में यूं भी शामिल ही, उनको दिल से निकाल क्या करना।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धमकियों के साथ में बहुत खूबसूरत अंदाज। जी,
2: शुक्रिया। और मेरी पसंदीदा लाइन, ख्वाब सारे नहीं मुकम्मल हूँ, ख्वाब
1: सारे
2: नहीं मुकम्मल हूँ, फिर हकीकत खंगाल क्या करना। क्या बात,
3: बहुत अच्छे,
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: और जिस्त उन्हीं के नाम कर दी है, जिस्त उन्हीं के नाम कर दी है, खुद को खुद ही हलाल क्या करना।
1: वाह वाह, बहुत अच्छा।
2: खुद को खुद ही हलाल क्या करना। और आखिरी शेर, सबके अपने तरीके चलने के, सबके
1: अपने
2: तरीके चलने के, इसमें इतना कमाल क्या करना।
1: वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
2: से मला
1: आपका मतलब ये है कि बस कुछ नहीं करना, क्या करना
2: नहीं, बहुत कुछ करना
1: नहीं,
2: है।
1: आपने कहा बहुत कुछ, मैं समझता हूँ। ठीक है, चैलेंज है अपनी जगह पे, आपने दे दिया, हमने स्वीकार कर लिया। हम तो आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि तुम मुझसे दूर थे कभी, मैं तुमसे दूर था। अंजलि जी, आपका ध्यान चाहूंगा। तुम मुझसे दूर थे कभी, मैं तुमसे दूर था, जरा खुद ही फैसला करो किसका कसूर था।
2: वाह वाह,
1: तुम मुझसे दूर थे कभी, मैं तुमसे दूर था, जरा खुद ही फैसला करो किसका कसूर था। जब तक न देख पाई थी मेरी नजर तुम्हें, जब तक न देख पाई थी मेरी नजर तुम्हें, मुझको भी अपने आप पे बेहद गरूर था, मुझको भी अपने आप पे बेहद गरूर था। तो मैं दिया जी आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने कहा क्या करना है, तो बहुत कुछ करना है, आप सिर्फ मुझे बताइए आपको क्या सुनना है।
2: मेरा सबसे पसंदीदा गाना तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
1: वाह, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तो आइए दर्शकों, और जो हमारे चाहने वाले हैं, हम उन सबको ये सुनाते हैं ये गीत,
2: तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल।
1: ये गीत आप सुनना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये गीत आप सुनते रहते हो, आपको बहुत ज्यादा पसंद है
2: जी।
1: तो आप ये गीत की चंद लाइनें हमारे श्रोताओं के लिए गुनगुनाइए, और इसके बाद हम दर्शकों आपको सुनाएंगे ये गीत, जो वास्तव के बीच में ओरिजिनल गीत है। अभी इस गीत को आप गुनगुना के हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
2: मैं अंतरे से शुरू करूंगी।
1: आप मुखड़ा अंतरा जहाँ से चाहे शुरू कर लीजिए।
2: तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी,

की तरफदारी नहीं होती, करें क्या हम जो हमसे ये अदाकारी नहीं होती, करें क्या हम जो हमसे ये अदाकारी नहीं होती।

अगर कुर्सी तुम्हारे नीचे सरकारी नहीं होती, अगर कुर्सी तुम्हारे नीचे सरकारी नहीं होती। और अभी बात मोहब्बत की थी, चल रही थी, तो मजा भी दर्द भी रुसवाई आंसू रत जगी।

0: नहीं होती।
1: अच्छा ना होगा, अच्छा ना होगा।
0: मोहब्बत के अलावा ऐसी बीमारी नहीं होती। बहुत शुक्रिया सर। और मिले गम ख्वार बन मेरे, मगर मालूम है मुझको, मिले गम ख्वार बन मेरे, मगर मालूम है मुझको, सियासत करने वालों में वफादारी नहीं होती। सियासत करने वालों में वफादारी नहीं होती। और सर आपको समर्पित करती हूँ दो पंक्तियां। कि रुलाते को हंसा देने का फन सब में नहीं होता, रुलाते को हंसा देने का फन सब में नहीं होता, दिखे आसान पर आसाई फनकारी नहीं होती, दिखे आसान पर आसाई फनकारी नहीं होती। बहुत शुक्रिया सर।
1: आपने ना सियासत के बीच में एक बात कही है, और मुझे खतरा है कि हम सियासतदान कहीं इसको न सुने। खैर मैं आपको एक चीज बताता हूँ।
0: जी सर,
1: बातचीत का सिलसिला भी हमारा चलता रहे। सियासत में हुआ यूं कि एक नवविवाहित दंपत्ति था, हनीमून के लिए वो लोग बाहर जाना था उनको। एक तालाब के पास उन्होंने देखा बहुत भीड़ लगी हुई है, और वो भी उस भीड़ में शामिल हुए। देखते क्या कि वहां पर एक तालाब के बीच में दो तीन बहुत खतरनाक से मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, और उन्होंने लिख रखा है कि भाई जो आदमी इसको पार कर जाएगा तैर के, उसको 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और खुदा ना खास्ता मान लीजिए तैरने वाले को मगरमच्छ खा जाए तो भी 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब पता नहीं क्या हुआ, एकदम वो आदमी तालाब के बीच में गया और बहुत जोर लगा उसके पीछे पीछे मगरमच्छ। वो भागा, बहुत भागा मतलब तैरा बहुत तेजी से, सांस फूली, बुरा हाल, बड़ी मुश्किल से पीछे पीछे मगरमच्छ खाने को भाग रहा है, और आगे आगे वो भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए तैर रहा है। किस तरीके से खैर बहुत ज्यादा जोर लगाया जैसे प्राण निकलने वाले ही हों, और किसी तरीके से वो आदमी उसको पार कर गया। जब वो पार कर गया तो उसको लोगों ने बहुत वहां पर उसकी प्रशंसा की कि भाई बहुत हिम्मत है आपकी, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आप इसको पार कर गए अपनी जान पर खेलकर, जबकि आपकी मौत आपसे चंद इंच दूर थी। ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? वो कहता है ये बाद में बताऊंगा, पहले बताओ मुझे धक्का किसने दिया। और जब पता लगा धक्का तो
2: पत्नी ने दिया था।
1: उन्होंने दिया था तो उन्होंने कहा भाई आपने ऐसा क्यों किया? कहते देखो ऐसा है ना, अगर जीत गए तो 5 करोड़,
0: और अगर
1: चले जाते तो 2 करोड़। तो भी देखो ऐसा है कि हमें तो दोनों तरफ फायदा ही फायदा था, जिंदगी के साथ भी
0: और जिंदगी के बाद भी।
1: ये है LIC। लेकिन मैं उस बात को नहीं भूलूंगा।
0: लेकिन सर आपने जैसे कहा पत्नियों पर बहुत सी स्टोरीज, जोक्स मुझे कहना चाहिए बने हुए हैं
1: जी,
0: तो पर पत्नियों के दिल की बात कोई नहीं सुनता।
1: अच्छा
0: जी, तो मैं एक दोहा यहाँ रखना चाहूंगी।
1: प्लीज प्लीज।
0: कि कहा चांद गाए कभी, चांद कहा जाता है प्रेमिका जब पत्नी नहीं बनती वो, कि

0: पत्नी जब से वो बनी दिखे चांद में दाग। मिस्टर कोचर नोट इट कि पत्नी जब से वो बनी दिखे चांद में दाग। खैर आपकी कला में ईश्वर ने कहीं पर कोई भी दाग नहीं रखा। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप ये बताइए कि आपको लोग सुनने के लिए तरसते हैं। मुझे मालूम है बहुत बड़ी बड़ी स्टेजों के ऊपर आपकी मधुर आवाज गूंजती है और आपकी कला के लोग दीवाने हैं, तो इतना पसंद करते हैं लोग आपको, कैसा लगता है?
1: हाँ सर, किसी का पसंद किए जाना ऑब्वियसली अच्छा लगता है।
0: क्या पसंद है जो हम आपको आज अपने दर्शकों और अपने श्रोताओं के बीच में आप सुनना पसंद करेंगे?
1: सर मेरी बेटियों को बहुत पसंद है एक गाना, वो मैं उनके लिए आपके रेडियो स्टेशन से सुनवाना चाहूंगी उनके लिए।
0: मैं चाहूंगा जो गाना आप अपनी बेटियों को समर्पित करना चाहती हैं आज की रेडियो विरसता के इस विशेष महिला काव्य गोष्ठी के आयोजन के बीच में, आप वो गाना हमारे दर्शकों को एक बार गुनगुना के सुनाइए और फिर वही गाना हम आपके लिए इस रेडियो स्टेशन से। वो हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम देख रहे हैं
1: बेटियों को
0: और जो श्रोता सुन रहे हैं वो जानते हैं आपकी आवाज कैसी है।

0: रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज, दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।
1: दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता पर। और रेडियो वितस्ता के ऊपर इस वक्त हम एक विशेष कार्यक्रम के बीच में सम्मिलित है जिसका नाम है सफर एहसासों का। रेडियो वितस्ता की चौथी वर्षगांठ के ऊपर इस कार्यक्रम के आयोजन के बीच में हमारे बीच में जो कवियत्री मौजूद हैं और उन्होंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको भसूड़ी सुनाई है, जो उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बेटियों को समर्पित करते हैं, तो अब इस भसूड़ी के पश्चात आते हैं हमारी अगली कवियत्री के पास में जो हैं अंजलि सिफर जी। मैं जानना चाहूँगा कि वो बेटियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अंजलि जी, आप कई स्तर के ऊपर, कई विशेष मंचों के ऊपर आप कार्यक्रम का संचालन करती हैं, कई किस्म के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, तो ये बताइए कि इनमें समावेश किस प्रकार से आप कर पाती हैं इस प्रकार के आयोजनों के बीच में, क्योंकि एक कार्यक्रम के बीच में श्रोता कुछ और होते हैं, अगले कार्यक्रम के इतने श्रोताओं का वर्ग कुछ और होता है और सब श्रोताओं की पसंद अपनी अपनी अलग अलग होती है, लेकिन संचालन करने वाला तो वही है ना, एक संचालन करता इतने प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर किस तरह से अपने आप को समावेश कर पाता है।
2: जी, आपने जो कार्यक्रमों की बात की, मैं बताना चाहूंगी कि कोरोना के समय में जिस समय हम सब बंद थे एक तरह से, और कलाकार के अंदर का जो वो कला होती है लोगों से बात करने की, मिलने की, अपनी कविताएं साझा करने की, उसे मैंने एक प्लेटफॉर्म देने का मन किया और एक यूट्यूब चैनल शुरू किया भावांजलि के नाम से, और उस पर स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से तकनीक के जहां नुकसान है वहां फायदे भी हैं, तो किसी भी सिचुएशन के मुझे लगता है नुकसान फायदे दोनों होते हैं
1: जी।
2: तो हमें उसके फायदे को उठाना चाहिए और नुकसान को भूलना चाहिए, तो उस समय में मैंने तकनीक का फायदा उठाया और स्ट्रीमयार्ड के माध्यम से देश में ही नहीं विदेश में बैठे हुए लोगों को भी जोड़ा। तो कुछ तरह के अलग अलग प्रोग्राम्स मैंने किए, जिसमें एक काव्य गोष्ठी थी जिसमें आप यकीन मानेंगे कभी कभी ऐसे कवि शामिल हुए जिन्होंने कहा कि हमने पहली बार किसी मंच पर अपना काव्य पाठ किया है, और उसके बाद उनका सफर, जिसे कहें कि उनके सफर ने गति पकड़ी। वहां मैंने 15 साल के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के कलाकारों को आमंत्रित किया, और बस खुशनसीबी ये रही कि जिसे भी मैंने एक आवाज दी तो उन्होंने मेरा निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और वो कार्यक्रम में आए।
1: मेरे भी खुशनसीबी है कि मैं पहली बार आज आपके साथ में काव्य गोष्ठी में शामिल हुआ हूँ, और प्रार्थना भी कर रहा हूँ, उम्मीद भी कर रहा हूँ शायद मेरे भी ये जो लाइन है थोड़ा सा गति पकड़ ले।
2: बहुत खुशनसीबी सर हम सभी की है कि आज हम रेडियो वितस्ता के श्रोताओं से मुखातिब हैं
1: जी।
2: बहुत ही बेहतरीन श्रोतागण हमें उस पार से सुन रहे हैं, तो ये कुछ सफर रहा कोरोना के समय में, देश विदेश में बहुत से लोगों को स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से जोड़ा, उनके बारे में जाना, जो साक्षात्कार किए उन उस साक्षात्कार के बाद सुनने वाले तो जरूर लाभान्वित होते होंगे, लेकिन मैं अपनी बात कहूँ तो खाली झोली लेकर अगर मैं बैठती थी तो बहुत सी नॉलेज की, अनुभवों की भरी हुई पोटली लेकर मैं कार्यक्रम को समाप्त करती थी। तो ये मेरा सफर रहा कोरोना के समय में भावांजलि का, जो अभी भी जारी है, हालांकि हफ्ते में एक कार्यक्रम तक ही सीमित रह गया है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं और श्रोताओं आप भी सुन रहे हैं कि अंजलि जी ने भावांजलि के माध्यम से जो अनुभव अपनी झोली के बीच में समेटे हैं उनका कितना लाभ इनको प्राप्त हुआ है, और इसमें तो कोई शक नहीं। वैसे एक चीज बताऊं कि आज का इंसान जो है ना बहुत खुदगर्ज सा हो गया है
2: जी। बिल्कुल,
1: आज का इंसान ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता जिसमें उसका फायदा ना हो,
2: हर
1: चीज में अपना लाभ ढूंढता है कि इसमें मेरा क्या लाभ होगा, इसको किस चीज से मतलब नहीं है, न कायदे की जरूरत है ना वायदे की जरूरत है, बड़ा खुदगर्ज इंसान है, इसे बस फायदे की जरूरत है। और आपने जो बात बताई मुझे बहुत अच्छा लगा कि अलग अलग विभिन्न मंचों से जिसके ऊपर आप विदेशों तक के बीच में अपनी पहुंच बनाने में सक्षम हुए हैं। मैं रेडियो वितस्ता की शुभकामनाएं आपको देता हूं कि इस परिवार की ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की तरफ से हमारी शुभकामनाएं आपको हैं, और ईश्वर करे दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी ये जो भावांजलि है ये आगे से आगे बढ़ती चली जाए, और जिस प्रकार से कई ऐसे लोगों को आप मंच प्रदान करती हैं जिन्होंने पहली बार मंच की शक्ल देखी हो, आप ईश्वर सामर्थ्य दे कि आप नए नए लोगों को इस दिशा के बीच में आगे बढ़ाते चले जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बेटियों के विषय में क्या विचार करती हैं और क्या कहना चाहती हैं?
2: जी सर, बड़े कह गए हैं कि बेटियां तो सबकी साझा होती हैं, तो सभी बेटियों के लिए और हर औरत माँ हो या ना पत्नी हो या ना बेटी जरूर होती है, होती ही है, तो हर बेटी को समर्पित करती हूँ अपनी ये गजल गीत के रूप में। फूलों से लिपटी डालियां होती हैं बेटी, फूलों से लिपटी डालियां होती हैं बेटियां, महकी हुई सी क्यारियां होती हैं बेटियां, है घर वो खुश नसीब हो पैदा जहां पर ये, है घर वो खुश नसीब हो पैदा जहां पे ये, पिछले जन्म की नेकियां होती हैं बेटियां,
1: बहुत खूब बहुत खूब,
2: पिछले जन्म की नेकियां होती हैं बेटियां, और वो खुश हो तो सुकून, दुखी हो जरा भी तो

0: और ये कहती हूँ कि मजमून जिनका होता है बस प्यार और अदब, मजमून जिनका होता है बस प्यार और अदब, वो खुशनुमा सी चिट्ठियां होती है बेटी, वो खुशनुमा सी चिट्ठियां होती है बेटियां, कोमल छुअन से इनकी तो सिल जाए जख्म भी, कोमल छुअन से इनकी तो सिल जाए जख्म भी, रेशम की ऐसी डोरियां होती हैं बेटियां।
1: बहुत बहुत, बहुत
0: सोचती हूँ कि श्रोतागण भी मेरे साथ गुनगुना रहे होंगे।

0: और बेटी को पालना भी है उसकी ही बंदगी।
1: वाह,
0: ये भी एक पूजा कर।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब।
0: बेटी को पालना भी है उसकी ही बंदगी, जन्नत को जाती सीढ़ियां होती हैं बेटियां, जन्नत को जाती सीढ़ियां होती हैं बेटी। और बहुत कुछ कहा जा सकता है बेटियों के बारे में, लेकिन आखिरी दो पंक्तियां रखती हूँ कि जिनको खुदा भी खाली नहीं मोड़ता सफर, जिनको खुदा भी खाली नहीं मोड़ता सफर, खुशियों की ऐसी अर्जियां होती हैं बेटियां, पुरखों की भेजी थपकियां होती हैं बेटियां, जन्नत को जाती सीढ़ियां होती हैं बेटियां, पिछले जन्म की नेकियां होती हैं बेटियां।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अंजलि जी, आप इस गजल को आप पढ़ रही थी, कह रही थी, और मैं देख रहा था। जितने शब्द आपने कहे वो सब एक चलचित्र की भांति मेरे मस्तिष्क में चल रहे थे। क्या खूब आपने बातें कही हैं, कहा उनको खिड़कियां, कहा और लास्ट के बीच में, अंत के बीच में जो आपने उनको एक उपमा दे दी है कि ये वो अर्जियां हैं जिनको ईश्वर भी खाली नहीं लौटाता। बहुत सुंदर, बहुत ही
0: जी। मैंने जिया है इस गजल को, क्योंकि मेरे पास दो बेटियां हैं, जुड़वा बेटियां, तो मैं जीती हूँ इस गजल को हर दिन।
1: आप खुशकिस्मत हैं जिनके पास दो बेटियां हैं। बेटियां होना तो उन्हीं को मिलता है जिनको ऊपर वाला
0: बिल्कुल
1: विशेष रूप से नवाजता है, उन्हीं को बेटियां मिलती हैं। तो आइए दर्शकों और जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे जितने भी श्रोता, अब मैं आपको सुनाता हूँ अंजलि सिफर जी का मन पसंदीदा ये गीत।

0: नहीं दी है वो तो अपने मुंह से कुछ नहीं कह पाएंगे। ये विशेषता ईश्वर ने सिर्फ इंसान को ही दी है कि वो अपनी जुबान से, अपनी भाषा से अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है। लेकिन दुख, दर्द, तकलीफ तो उनको भी होती है जिनकी जुबान नहीं होती। तो मेरी इस आवाज को सुनने वाले रेडियो दस्ता के जितने भी श्रोता हैं उनसे ये आग्रह है कि अगर आपको कहीं पर कोई सड़क पर, मोहल्ले में, गली में, कहीं पर भी आपको कोई ऐसा पशु दिखता है जो घायल है, बीमार है, असमर्थ है, तो उसकी सहायता कीजिए। हो सके उसकी मरहम पट्टी कीजिए, हो सके तो उसको इलाज के लिए किसी नजदीकी अस्पताल में ले जाए, क्योंकि यकीन मानिए बेजुबान की सहायता आप करेंगे ना तो आपकी सहायता ऊपर वाला करेगा। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम अपनी अगली रचना के लिए इस वक्त आ गए हैं फिर दोबारा से दिया शर्मा जी के पास में। तो दिया जी, अब आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनाना पसंद करेंगे?
1: मैं एक रचना रखना चाहूंगी, दिल को तेरे कागजात कर दूं, दिल को तेरे कागजात कर दूं, आंखों को अपनी दवात कर दूं, दिल को तेरे कागजात कर दूं, आंखों को अपनी दवात कर दूं, आ आ आके पहलू में बैठ तो सही, जो किसी ने कभी की नहीं, मैं वो बात कर दूं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी।
1: आके पहलू में बैठ तो सही,
0: जो किसी ने की नहीं, मैं वो बात कर दूं।
1: किसी ने कभी की नहीं, मैं वो बात कर दूं। तू मुझसे मशवरा तो कर, जो तू चाहता है पेश वो सौगात कर दूं। तू मुझसे मशवरा तो कर, जो तू चाहता है पेश वो सौगात कर दूं। तू माथे पे शिकन न ला, तू माथे पे शिकन न ला, आजा मैं मुट्ठी में हालात कर दूं।
0: वाह, क्या बात।
1: तू माथे पे शिकन न ला, मैं मुट्ठी में हालात कर दूं। तू एक बार जुबां से कह तो सही, तू एक बार जुबां से कह तो सही, मैं तेरे नाम अपने दिन रात कर दूं।
0: वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छा।
1: तू एक बार जुबां से कह तो सही, मैं तेरे नाम अपने दिन रात कर दूं। तू ज्यादा सोच मत, तू ज्यादा सोच मत, मैं तुझ पे कुर्बान अपने सब जज्बात कर दूं।
0: वाह वाह वाह, मैं तुझ पे कुर्बान अपने सब जज्बात कर दूं,
1: मैं तुझ पे कुर्बान अपने सब जज्बात कर दूं, आजा मैं मुट्ठी में हालात कर दूं।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: तू खुल के खुल तो सही मेरे सामने, तू खुल के खुल तो सही मेरे सामने, कहीं ये ना हो कि मैं कोई सवालात कर दूं।
0: बहुत खूब, डराने की एक भरसक कोशिश। बहुत अच्छे जी।
1: तू खुल के खुल तो सही मेरे सामने, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझसे कोई सवालात कर दूं। सुन, तू दुश्मनों को अपने छोड़ना मत, सुन तू दुश्मनों को अपने छोड़ना मत, वरना ऐसा ना हो कि मैं कोई वारदात कर दूं।
0: क्या बात है।
1: वरना ऐसा ना हो कि मैं कोई वारदात कर दूं, जो किसी ने कभी की नहीं, मैं वो बात कर दूं, आजा मैं मुट्ठी में हालात कर दूं।
0: क्या बात है, शुक्रिया। वस्त्र बहुत खूबसूरत शब्द और बहुत सुंदर सिमाला के बीच में पिरोकर दिया शर्मा हमें सुना रही थी कि मुट्ठी में हालात कर दूं।
1: मुझको लगता है नारी इतनी सक्षम है कि वो मुट्ठी में हालात कर सके।
0: अजी मुट्ठी में नारी जब पति को कर लेती है तो हालात तो बड़ी बात है।
2: नहीं होते सर, एग्जांपल देख लो, दिव्या रहा है सर।
0: आपको एक चीज बताता हूँ, जरा गौर फरमाइए कि मुट्ठियों में कांच के टुकड़े दबा कर देखिए। मुट्ठियों में कांच के टुकड़े दबा कर देखिए, जब लहू रिसने लगे तब मुस्कुरा कर देखिए।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: जब लहू रिसने लगे तब मुस्कुरा कर देखिए। और आपने जो बात कही थी मुट्ठी में हालात, हालात महिलाओं की तो कोई मतलब बात कहने वाली है ही नहीं। वो तो किस चीज को वो मुट्ठी में नहीं कर सकती, हर चीज को कर सकती। मैं आपको बताता हूँ कि उलझनों का दास बनकर खुद को समझाना पड़ा। उलझनों का दास बनकर खुद को समझाना पड़ा, जिस जगह आना नहीं था उसी जगह आना पड़ा।
1: क्या बात,
0: चाहे जितना काटिए इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, चाहे जितना काटिए इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। मन के बंजर खेत में यदि लोभ का दाना पड़ा,
1: बहुत
0: मन के बंजर खेत में यदि लोभ का दाना पड़ा, तो लोभ का दाना तो हमारे अंदर श्रोताओं पड़ ही चुका है। और मैं फिर एक बार उस लोभ के ही वशीभूत आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारी आज की अन्य जो मेहमान हैं, दिव्या बसिंग कोछड़ जी को, कि आज की वो अंतिम रचना हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी। क्योंकि कार्यक्रम और समय हमें आपत्ति इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और ज्यादा लंबा खींच सकें, तो अब धीरे धीरे ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। आज की अंतिम रचना हम सुनेंगे दिव्या भसीन कोछड़ जी से।
3: शुक्रिया सर। सर ये रचना मेरे मन के बहुत करीब है। इसका शीर्षक है पिताजी की डायरी।
0: हाँ मुझे याद आया, ये जो इनकी रचना है पिताजी की डायरी वास्तव में बहुत हृदय स्पर्शी रचना है। और घर के सारे हालात इन्होंने अपने पिताजी की डायरी के बीच में लिख छोड़े हैं, यकीन नहीं होता। आप सुन लीजिए। लीजिए
3: ये पिताजी की डायरी को रिलेट कर पाएंगे बहुत से वो बच्चे जो 80s 90s में पैदा हुए। उस समय हमारे पिताजी के पास गैजेट्स नहीं हुआ करते थे, डायरी हुआ करती थी। और वो महज एक डायरी नहीं थी, जिंदगी का लेखा जोखा था। तो उस पे पंक्तियां रखती हूं कि जब हाथ में उठाई पिताजी की डायरी,

की धायरी, बतियाई मुस्कुराई पिताजी की धायरी। क्या सोच रही थी उसमें कि क्या खोलूंगी और क्या निकलेगा,

0: शानदार।
1: खुशबू से कब नहाई पिताजी की डायरी, और लिखा क्या था कि शादी की रस्म में खर्च शगुन के हिसाब सब, शादी की रस्म में खर्च शगुन के हिसाब सब, यादों में खींच लाई पिताजी की डायरी, यादों में खींच लाई पिताजी की डायरी, और लिखे तो हाशियों में भी कितने हिसाब थे, लिखे तो हाशियों में भी कितने हिसाब थे, पूरी में पढ़ न पाई पिताजी की डायरी, पूरी में पढ़ न पाई पिताजी की डायरी, और मजबूर सी दिखी कहीं किश्तों के बोझ से, मजबूर सी दिखी कहीं किश्तों के बोझ से, मैंने गले लगाई पिताजी की डायरी, मैंने गले लगाई पिताजी की डायरी। बहुत शुक्रिया दीदी। और माना भरी हुई थी बहुत उनकी तरह ही, माना भरी हुई थी बहुत उनकी तरह ही, क्यों खाली नजर आई।

लड़खड़ाऊं तो जब जिंदगी की राहों में मैं लड़खड़ाऊं तो करती है रहनुमाई पिताजी की दाई।

0: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत
2: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। हमारी ओर से रेडियो तस्ता के पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद इतनी खूबसूरत रचना हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए। तो ये जो हम सुन रहे थे अभी पिताजी की डायरी, हृदय स्पर्शी सारी भावनाओं को बयान करती हुई बिना कुछ लिखे हुए भी सब कुछ कह जाती हुई, ये थी दिव्या भसीन कोछट।
0: मैं चाहती हूँ ये गाना मेरे पतिदेव को समर्पित किया जाए। गाना कुछ यूं है कि

0: पूछ चन में।
1: आप एक और भी तो कह रही थी हिंदी गीत।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: वो कौन सा गीत था जो आप समर्पित करना चाहती थी? दिव्या भसीन कोछड़ जी, हम इनके अनुरोध के ऊपर ये गीत इनके पतिदेव जयंत कोछड़ जी को समर्पित करते हैं।

دوستو خوش آمدید. یو آر کلوز ٹو مائی ہارٹ، تم میرے دل کے قریب ہو.

धीरे ये सारे मौसम बदलते रहे, पर तुम्हारे लौटने के इंतजार का मौसम अभी लुप्त हो चुका है और दरियाओं की रवानी थम चुकी है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही शायद तुम लौट आओ, मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए। मोहब्बत अब बेजुबान है, खामोश साहिलों में पानी की तरह है।

ये रात है खामोश और आज की शब ये सितारे बिना चांद के तन्हाई महसूस कर रहे हैं।

जबकि खामोशी को चीरती हुई तुम्हारी दर्द भरी आवाज मुझे तुम्हारे पास पास होने का एहसास कराता है। पर क्या तुम हो मेरे हमनवा हमराज? शायद इस बात का अंदाजा लगाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि तुम अक्सर गुम हो जाते हो मेरी तन्हाइयों को चीर कर, और इस खाली शब के इन अंधेरों में मैं ढूंढता हूं चांद को जो आज कहीं खो गया है।

बिखरते दिलों के एहसास को महसूस करने के लिए हमारी नजदीकियां अक्सर उड़ान तो भर लेती हैं पर गहराइयों को छू नहीं पाती। शायद यहीं से जिंदगियों ने तड़पना शुरू किया है। एक सहारे की जरूरत है हमारे आने वाले कल को, क्योंकि बेपरवाह इन काफिलों में हम ही सर फिरे थे जो तुम्हारी उम्मीदों में गुमनामी की जिंदगी काट रहे हैं। यह सोचकर कि वो मेरा दामन भर देगा अपनी रहमत से, करम अपनी नवाजिश अपनी मेहर से।

सफर रहा हमारा अधूरा, शायद कुछ उलझने पड़ी है सरी रहा, जो थाम लेती है दामन बेवजह। बेवजह क्यों यह सूरज मेरे सफर में मेरा साथ छोड़ देता है और मैं परछाइयों के हमराह अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता हूं, यह सोचकर कि शायद मेरा यह अधूरा सफर मंजिल के साथ साथ मुझे मेरी खोई हुई पहचान वापस दिला सके।

मेरे शब्दों में तुम्हारे नाम की दीवानगी हमेशा महफूज रहती, जो तुम मेरी ढलती उम्र को अपनी पनाह में लेते, मेरे गुनाहों को अपने आंचल में छिपा लेते, मेरे दर्द को अपना दर्द समझते, मेरी परेशानी में मेरे हम कदम साथ साथ चलते चलते मेरे हमराह मेरे सफर के आखिरी पड़ाव तक, जहां से हमारे तुम्हारे बीच पनपे एक नए रिश्ते की शुरुआत।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज के कार्यक्रम भी पसंद आए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, हमारे कार्यक्रमों के साथ रहने के लिए। उन सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करते हैं जो हमें अपना फीडबैक भेजते हैं, और आप सभी से हम अपेक्षा करते हैं कि आप अपने फीडबैक हम तक पहुंचाएंगे और अपना फीडबैक भी और साथ में अपने सुझाव भी आप भेजेंगे, ताकि हम उन सुझावों पर काम करके हम उन्हीं कार्यक्रमों को प्रसारित करेंगे जो रखती हो आपसे सरोकार। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 12 सेकेंड। तो चलिए, आज का ये सफर भी अपनी आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। उम्मीद है इन लम्हों ने आपके दिल को सुकून दिया होगा और आपकी शाम को थोड़ा और खास बना गया हो गया। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक बेहद गौरवमयी विषय पर। हर दिन हम किसी खास विषय पर बात करते हैं जाने से पहले, और आज के विषय है खेल के मैदान में भारत की बढ़ती हुई ताकत, पूरे देश के लिए गर्व की बात।

एक समय था जब भारत को सिर्फ क्रिकेट के देश के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। हॉकी के पुराने गौरव को फिर से हासिल करने से लेकर ओलंपिक और एशियाई खेलों में पदकों की बढ़ती संख्या तक, कुश्ती, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, शूटिंग और तीरअंदाजी जैसे खेलों में हमारे खिलाड़ी दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। खास करके हरियाणा के हमारे खिलाड़ी जो है वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा मेडल उन्होंने जीते हैं और देश का नाम रोशन कर दिया है। यह सफलता केवल खिलाड़ियों की मेहनत का नहीं बल्कि पूरे देश की उस सोच में बदलाव का प्रतीक है जो अब खेलों को करियर के रूप में गंभीरता से देखने लगा है। छोटे छोटे गांव और कस्बों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने वाले खिलाड़ियों की कहानियों से हम यह सीखते हैं कि संसाधनों की कमी कभी भी सपनों के आड़े नहीं आनी चाहिए। जब देश का हर युवा खेल को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अनुशासन, जज्बे और राष्ट्र गौरव के रूप में अपनाएगा तो भारत खेल जगत में और भी बड़ी ऊंचाइयां छुएगा। दोस्तों, आइए हम सब अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं, बच्चों को खेल के मैदान से जोड़ें, क्योंकि एक स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रेमी युवा पीढ़ी ही भारत को खेल जगत में विश्व गुरु बना सकती है। आप सभी की जानकारी के लिए, इस समय जो एशियाई गेम्स चल रही हैं उसमें पहले नंबर पर चाइना है और भारत अब 8वें नंबर पर आया है। आज सुबह तक 10 गोल्ड मेडल के साथ साथ जितने भी हमने मेडल जीते तो हम मेडल टैली में 8वें नंबर पर है और उम्मीद करते हैं कि हम और भी इसको बेहतर बनाएंगे जब तक एशियन गेम्स समाप्त होंगे। तो ये था आज का विषय और उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। श्रोताओं, आप सभी के लिए मैं कुछ पंक्तियां लाता हूं हर दिन के लिए। आज भी 4 पंक्तियां लाया हूं जो आप सभी के नाम है। आज की पंक्तियां यूं है, तिरंगा जब लहराए किसी मैदान की शान में, तिरंगा जब लहराए किसी मैदान की शान में, हर भारतवासी का सीना गर्व से भर जाए उस आन में। वितस्ता भी तो बहती है इसी मिट्टी के गौरव के साथ, वितस्ता भी तो बहती है इसी मिट्टी के गौरव के साथ, यही सिखाती है जीत का जज्बा हो हर नौजवान में, यही सिखाती है जीत का जज्बा हो हर नौजवान में। तो ये थी आज की पंक्तियां और जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण। और कल 2 अक्टूबर 2026 शुक्रवार को जो कार्यक्रम लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर, वंदे मातरम से हम करेंगे शुरुआत और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 भक्ति संगीत और 7:05 पर आप सुनेंगे वितस्ता गीत माला एपिसोड 8। ये कार्यक्रम आधारित है मसरूर कश्मीरी के गजलों और कविताओं पर। पेश करेंगे भारत सोपोरी और 8:30 शुक्रवार को आप सुनते हैं रंगमंच की ओर। कल आप एपिसोड 2 सुनेंगे फिल्म सौदागर जो 1973 में बनी थी उसके ऊपर कार्यक्रम। और ये उन कलाकारों के लिए कार्यक्रम बहुत ही फायदेमंद है जो मंच और थिएटर में काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। 9:30 बॉलीवुड की सुनहरी यादें राजेश खन्ना के ऊपर ये कार्यक्रम तैयार किया गया है, पेश करेंगे रमेश मराठा। और 10:24 पर गुप्तगु शिव किरमच के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे नरेश शर्मा। संगीत की सभा जारी रहेगी, कल शुक्रवार है, कल आपको इंतजार रहता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का जो आप सुनते हैं दिन के 2:00। कल आप सुनेंगे नया कार्यक्रम दिन के 2:00 से और 6:00 भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, 7:00 होगा काव्य गोष्ठी, एपिसोड होगा नफस अंबालवी जी के साथ, पेश करेंगे भारत सोपोरी। और 8:30 सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है तुम भी कुछ बात करो। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम भी आपको पसंद आएंगे। अपना फीडबैक जरूर हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी टीम रेडियो वितस्ता के कैजुअल अनाउंसर अनु ने तैयार की थी। तो दोस्तों, आज का ये वक्त आपके साथ बिताकर बहुत अच्छा लग रहा है।
उम्मीद है ये बातचीत आपके अंदर के खेल प्रेमी और देशभक्त दोनों को गर्व से भर दिया होगा। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत, लेता हूं आपसे विदा। FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के साथ बने रहने के लिए दिल से, तहे दिल से और प्यार से शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।